वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आशा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरे ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया।

बाजी घर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजी घर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाउ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तुलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी, भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही, नेरै नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी देहो, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उस मा

जौ को शान शिवावै हो, लोग को टंब सबोते तोरे तो अपन बेडी आवै हो। ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो। गुंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो। बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू था प्यो हो। नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो। सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाज।

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं ओदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कही है प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज पुयंग प्रसंग जैसे है, अब कश मर्म जन आया। अनक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट पोग वै सोई। कह रविदास हाथ पहने रह, सहजे हुए सोई। जाओ हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करो, हम छूटे तुम यारा दे। माधवे जानता हो जैसी तैसी, अब कहां करोगे ऐसी रहाओ। मीन पकड़ो फांके वार काटो, रांध कियो बहुबानी। खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ न बिसरियो पानी। अपन बापे नहीं किसी को, पावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्याप्यो, भक्त नहीं संतापा। कह रविदास भगत एक बाडी, आवे कास्यो कही है। जा कारण हम तुम आरा दे, सो दुख अजहू सही है। दुलभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अब बेके। राजे इंद्र समसर ग्रे आसन, बिन हर भगत कहो के लेख। ना बिचारो राजा राम को रस, जे रस अनरस बिसर जाही रहाओ। जान या जान पय हम बावर, सोचा सोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ प्रवेश नहीं। कहियत आन अचरियत आन काश, समझ ना पर अप्रमाया। कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जी दया। सुख सागर सुरतर चिंता मानो, काम तेन बस जाके। चार पदार्थ अष्ट महा अष्ट दशा सिद्ध, नव करतलता के। हर हर हर ना जपै रसना, अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद बिद, चौतीस अखर माही। ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सर नाही। सहज समाध उपाद रहत फुन, बड़े पाग लिव लागी। कह रविदास प्रगास हृदय धार, जन्म मरण पै भागी। जाओ तुम गिरवर तव हम मोरा, जाओ तुम चंद तव हम भय है चकोरा। माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यो तोर कमन स्यो जोरे रहाओ। जाओ तुम दीवरा तव हम बाती, जाओ तुम तीर्थ तव हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरे अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और ना देवा। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होएगो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गाठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लो गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

नहीं थाओ। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदा तार। तनासरी महला पहला, चोर सलाहे चीतना पीजे, जे बदी करे ता तसूना छीजे।

सहा सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जा

तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बड़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मन एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया को लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरनी लाए साध संग

गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवां जिसका तन मनो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवां वडे वडे राजन यार पूमन ताकी तृष्ण ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मह किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रप बिन हर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहु नारी परग्रह जोहन चूके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपार मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एहो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बनयावै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरना साको उस तां की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरा ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बिखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे हो विश्राम निद पाई।

माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेल्यो दूआ किस ही वाद घाट किस ही पै सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन्हे हो चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद मां सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया। अपने घर लै आया खाटे तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे। जिहवा एक कवन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाओ। कोट प्राद हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महल।

तेरी शरण पया हो जीवा, तू समर्थ पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभ को आराधी, नानक सद कुर्बान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले हो, हम ते किछु न होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो रहाओ। अग्न कुटुंब सागर संसार, भरम मोह अज्ञान आधार, ऊच नीच सुख दुख, त्रापस नाही तृष्णा भूख, मन बासना रच बिखै ब्याद, पंच दूत संग महा असाद, जी जहान प्राण तन तेरा, नानक जान सदा हर नेरा। तनासरी महला पंजवा, दीन दर्द निवार ठाकुर, राखे जन की आप, तरन तारन हर निद, दुख न सके ब्याप, साधु संग भजो गोपाल। आन संयम किछ न सूजे, ए जतन काट कल काल, रहाओ आद अंत दयाल पूर्ण, तिस बना नहीं कोए, जन्म जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथा शास्त्र, भगत करे विचार, मुक्त पाईए साध संगत, बिनस जाए अंधार। चरण कमल आधार जन का, रास पूंजी एक, तान मान दी बाण साचा, नानक की प्रभ टेक। तनासरी महला पंजवा, फिरत फिरत पेटे जन साधु, पूरे गुर समझाया, आन सगल बिद क्याम न आवै, हर हर नाम ते आया, ताते मोहे तारी ओट गोपाल। शरण परयो पूर्ण परमेसर, बिनसे सगल जंजाल रहाओ। सुरग मृत पयाल भू मंडल, सगल ब्यापे माए, जी उदारण सब कुल तारण, हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्व निधाना, कर कृपा जे दे स्वामी, बिरले काहू जाना। तनासरी महला पंजवा, कर दूजा चौपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। छोड़ जाहे से करे पराल, कामना आवे से जंजाल, संग न चल तिन सो हीत, जो बैराई से ही मीत। ऐसे परम भुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवारा, रहाओ। साच धर्म नहीं पावे डीठा, झूठ तोह स्योर च्यो मीठा, दात प्यारी विसरिया दा तारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई

जा कै संग तेरे बंधन छूटै, गहो पार ब्रह्म शरण, हृदय कमल चरण, अवरे आस कछ पटल ना कीजै। सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा कीजै।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ, चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बिकार देखो सगल है फीके, एकै गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन थापियो हर जपना निमख जापियो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे करम पल्ला तिन ओट गई संत पल्ला, तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान, एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोह महापौजर तारे रहाओ, सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे, चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे, तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै।

निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक मात दूध जैसे बाले सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनाश्री महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नव निद सिद्धार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई गृह बार ठाकर भगतन का रवर आश्रम ठाई रहाओ। ता को कोई न पहुंचन हारा जा कै अंग गुसाई जमकी त्रासम कै जिस मृत नानक नाम ते आई। तनाश्री महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देह गर्भ पूमवंत अभिमानी राजा जन सगल राज हमरा त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार जैसा बित तैसा हुए वरत अपना बल नहीं हार रहाओ। आन त्याग पै के आसर सरन सरन कर आए संतानुग्रह।

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ताक जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सह समावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निध नानक कह सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करै मान खुडहै कावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै पेख करै निर्बन जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग टुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा नाम गुर दी हो अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मैं तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पए दर्श पेखे माथे परोरवाल रस रस गुण गा।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचनन उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राख महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। नासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ सिओ लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगेओ। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम सिओ मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी।

जन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ। पोह पंबद ज्यो बास बस्त है मुकरमा है जैसे शाई तैसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई। बाहर भीतर एको जाना एहो गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीना मिटै ना परम की काई। तनासरी महला नावा साधो एहो जग परम पुलाना राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुतबंता ता कै रस लपटाना जोबन तन प्रभता कै मद मैं अहनस रह देवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन ता स्यो मन ना लगाना जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नामा ते जोगी को जुगत ना जानो लोभ मोह माया ममता फनो जेह कट महे पछानाओ रहाओ। पर निंदा उस्तत न जाके कंचन लोह समानो हर सोग ते रह अतीता जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दै दिस कौ धावत व चल जाहे ठहरानो कौ नानक के बिद को जो नर मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नावा अब मैं कौन उपाओ करो जे बिद मन को संसा चूके पौनिद पार परो रहाओ। जन्म पाए कश पलो ना कीनो ताते अदक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो। गुरमत सुन कश ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानाओ तब हाँ पतत तरो। तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरसागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर चुग चुगै प्रभावै सरवर में हंस प्राण पत पावै। क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी। मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए। प्रेम भगत कर सहे समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर। अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे। त्रिपवन जोत रहे लिव लाई सुर नरनाथ सच्चे सरनाई। आनंद मूला नाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे। हमे मार मिले पगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म पदा

जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद कहो जे मनपति आए साचे निर्मल मैल न लागै गुर कै शब्द भरम पौ भागै सूरत मूर्त आद्यानूप नानक जाचै साच स्वरूप तनासरी महला पहला सहज मिले मिलिया प्रवाण नात स्मरण न आवण जान ठाकुर मैं दा दास मैं सोए जै देखा तै अवर न कोए गुरमुख भगत सहज कर पाई बिन गुर भेटे मरिया जाइए रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै अकथ कथावै शब्द मिलावै हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकर साच प्यारा तन मैं मनुआ मन मैं साचा सो साचा मिल साचे राचा सेवक प्रभ कै लागै पाए सतगुर पूरा मिले मिलाए आप दिखावै आपे देखै हठ ना पतीजै ना बहु पेखै घड़ पांडे जन अमृत पाया प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे बहुत सियाण पे आवै जाहे नाम जपै पौ भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बनवासा परमत डोलत पय उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए।

कोई ऐसोरे पेट संत मेरी लाहे सगल चिंत, ठाकर स्यो मेरा रंग लावे। पड़े रे सगल बेद नह चूके मन भेद, एक खेना धीर मेरे करके पंचा। कोई ऐसोरे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम मेरा हृदय संचा। जे तेरे तीर्थ नाए अहम बुद्ध महल लाए, कर को ठाकरो एक तिल ना माने, कद पावो साध संग। हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सनाने, सगल्या शर्म कीने मनु आने पतीने। बबेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता, पार ब्रह्म कै रंग राता। मेरे मन की दुर्मत मल खोए, कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता। गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेख, जिस भेटिए सफल मूर्त, करे सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेख। मन अठ जो कमावे तिल ना लेख पावे, बगल जो ध्यान लावे माया रे तारी। कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई, तिस भेटे गत होए हमारी। सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए, गुर कै शब्द मेरा मन राता। सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद, सुख नानक ला दे हर चरण पराता। सफल सफल पई सफल यात्रा, आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा। तनासरी महला पहला, शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दस पूर्व सदा दसहरा। हो नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ तरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानण, ने साच तीर्थ मजना। साच ना लागे मैल क्या मल तोई है, गुणे हर परोए किस को रोई है। विचार मारे तरे तारे, उल्ट जोन ना आवे। आप पारस परम त्यानी साच साचे पावे। आनंद अंदर हरख साचा, दुख किलविख पर हरे। सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार शब्द सुहावनो। साला हे साचे मन सतगुर, पुन दान दया मते। फिर संग पावे सहज नावे, बेणी ता संगम सत सते। आराधे अकंकार साचा, नित दे चढ़े सुवाया। गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया। कहन कह सब कोए केवड़े आखिए, हौ मूर्ख नीचा जान समझा साखिए। सच गुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मानिया मेरा। कूच कर आवे बिखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा। आखण तोट ना भगत भंडारी, परपुर रहा सोई। नानक साच कह बेनंती, मन मांजे सच सोई। तनासरी महला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो। साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा, जिन सिर जी तिन गोई। परवाना आया हुक्म पठाया, फिर न सकै कोई। आपे कर वेखै सिरसर लेखै, आपे सुरत बुझाई। नानक साहब अगमा गोचर, जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर ना कोए, आया जाए सी जियो। हुक्मी होए नबेड़, परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकथ कहाए, सच में साई समाना। आपो पाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाणा। सच्ची वडियाई गुरते पाई, तू मने अंत सिखाई। नानक साहेब अवरना दूजा, नाम तेरे वडियाई। तू सच्चा सिरजनहार, अलख सरंदिया जियो। एक शब्द इरा वाद वधंदिया जियो।
दो राह चलाए हुक्म सवाए जन्म वा संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्म ही आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहेब सब संजापै साचा सृजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सोहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसै पारस होए जा तेरा मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहंदर साचै साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम ते आए सा जियो सच नाम ते आई साच वाई गुरमुख साच पछाणा दीना ना दयाल निरंजन अंधन नाम वखाणा करनी कार तुरो फुरमाई आ मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी तनासरी संत महला पहला पिरसंग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखे आला लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणिया चार नहीं रहा।

हमरे मन तनु राम को नामा, राम सिमरो राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काले अवधियाई। अजा मालो गज गन का पतत कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए।

दुर्योधन से भाई 12 जो जन शत्र चले था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जन अपने उपर, नाम देव हर गुण गाए, 10 बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, 70 दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा कर हला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यो तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले का हूं डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला,

एहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर रखो मन सुमद कर करो चरण हृदय धरो रसन अमृत राम नाम भाखो मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन घटै मैं तो मोल महंगी लई जी सटै रहाओ साध संगत बिना भाव नहीं उपजै भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदासक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छटकारे नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाऊं, नाम तेरा तुही चवर टोलारे, दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृष्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ, संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे, कर्म कर कलंक मफीट सरी, बिसव का दीपक स्वामी, तांचे रे स्वार्थी, पंखी राय गरड़ तांचे बादवा, कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी, तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारी, कर्म कर कपाल मफीट सरी, अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तारो शिखर सुनागर नदी चे नाथं, कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गाड़, ओपाड़ी ले रावण बाण, साल बिसाले आन तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीट सरी, पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन, ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति, मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को रहाओ, उत्तम दियारा निर्मल बाती, तुही निरंजन कमला पाती, रामा भगत रामानंद जाने, पूर्ण परमानंद बखाने, मदन मूर्त पैतार गोबिंदे, सैन पणै पज परमानंदे, पीपा कायो देवा कायो देवलो, कायो जंगम जाती,

जो ब्रह्मंडे सोई पिंड जो खोजै सो पावै पीपा प्रणवै परम तत् है सतगुरु होए लिखावै तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो परिया शादन निकाया नाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो।

जय श्री महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे हीरै रत नाम हर बसिया गुरहा तरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुखी उतरे।

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंगो महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा।

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभ कहो जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभ कहो गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभ कहो जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल।

नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वाको ब्याध ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार परयो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानक अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवो तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराध तिस बिन आन ना के हैं जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेमठ गौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकी कीमत कहन ना जाई कुदरत कमन हमारी लाए लाए लड़ दास जन अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या भरणी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसे हर सेवा निश्चल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जैत सरी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलेओ मन माया उर जायो जो जो कर्म कियो लालच लागो तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन कौतायो
रतन राम कढ़ी के पीतर ताको ज्ञान ना पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जय श्री महला नावा, हर जू राख लिहो पत मेरी, जम को त्रास पयो उर अंतर, शरण गही कृपा निर तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फोनो, करत पाप अबहारा, पै मरबे को बिसरत नाहनो, तह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारणो, दे दिसको उठताया, कट ही पीतर बसै निरंजन, ताको मर्म ना पाया। नाहन गुनो नाहन कछ जप तप, कौन कर्म अब कीजै, नानक हार पर्यो शरणागत, अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा, मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो यो संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तहारे, पायो नाहे तह पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को, कबू नाहे संभारा, नानक शरण पर्यो जग बंदन, राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा, शंत कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवों अंधन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे, एक पूरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रे रंग रंगारे, एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना, ज्यो जल मीना, चात्रक जवैत संतिया, जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया, मुंह कही ना जेहिया, यार वे हिक डू हिक चाड़ै, हौ किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे, नित कर दे भोग बिलासा, तना देख मन चाओ उठंदा, हौ कद पाई गुणतासा। जिनी मैंडा लाल रिजाया, हौ तिस आग्या मन डेहिया, नानक कह सुन बिनो सुहागण, मुंह दस डिखा पिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा, किसनी सी छंदा, यार वे तै रव्या लालन, मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया, जै तन भाग मथाने, बहा पकड़ ठाकर हौ किदी, गुण अवगुण ना पिछाने। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किछ सुहंदा, जन नानक तन सुहागण साई, जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी, सा मैं पाई, वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया, पिर दयाल सद नवरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी, प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सुखेंदी, सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा, कर दूजा शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ, कहन न जाया कथ, नानक प्रभ शरणागति, राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख्य अवगण मेरिया। असंख अवगण खते फेरे, नित प्रत सद पूली है, मोह मगन बिकराल माया, तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार बिखड़े, प्रभ नेर हूं ते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारो, काट पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवै असंख गुण, ऊंचा प्रभ का नाओ, नानकी बेनंतिया, मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ, कां पह जाइय, आठ पैर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना, मनह चिंदिया पाई है, तजमान मोह विकार दूजा, एक स्यों लिवलाई है।
ਅਰਪ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ ਆਪ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਐ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈਐ ਸਲੋਕ ਹਰੇ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਭੈ ਸਾਥ ਸ਼ੰਤ ਸਾਥੀ ਅੜਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਦੂਸਰ ਨਾਹੇ ਕੋਏ ਥਾਂਥਨ ਅੰਤਰ ਆਪ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਸੋਏ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੇ ਕਿਆ ਗਨੀ ਭਜ ਸਰਨ ਸੁਵਾਮੀ ਸੁਖੈ ਗਾਮੀ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹੇ ਕੋਏ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਹੋਏ ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ੰਤ ਅਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਬੁੱਝੀ ਤਪਤਿਆ ਗਾਨਿਆ ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ ਕਰਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਪਰਮਾਏ ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ ਜੋਬਨ ਗਿਆ।

कहया ना माने सिर खाक शाने जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंगया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया। दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर। सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अग्नासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच। पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई। करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक अरचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना बिनासन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए। पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार। उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जले मन तन उर तार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण। खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माने जिस संग तै स्यों लाइय ने हो। सो सहो बिंदन विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग। गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग। हर सिमरतो तन मन हरिया लै जाए विजोग। साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग। सलोक कुटुंब जतन करण माया अनेक युद्ध में। हर भगत भावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै। टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत। साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए। कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत। कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत। जैसा बीजै सो लुणै कर्म हो खेत। अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत। सलोक कोड़दान इस नानंग अनक सोधन पवित्र तै। उचरंत नानक हर हर रसना सर्वपाप विमुचते। ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे। मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे।
ਪੌੜੀ ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਉ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਨ ਮਰਨ ਪੈ ਕੱਟੀ ਐ।

नाद कुरंग कै बेदया सन मुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सास आराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी उदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे नानक सावेलड़ी प्रवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कह मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पातत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख लेवो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरप भय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाइये वड्डे पुन आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास।

कृपा करै हिक सेवी हिक समला हर एक सपै अरदास नाम वखर तन संचया नानक सच्ची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो सब किछ आपे आप दूजा कहां के हो आप करो प्रभदान आपे आप ले हो आवन जाना हुक्म सब निश्चल तुद थे हो नानक मंगे दान कर कृपा नाम देहो जय श्री बाणी भगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाथ कछु ना जानो मन माया के हाथ बिकानो रहाओ तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कलजो के कामी इन पंचन मेरो मन जो बिगारयो पल पल हर जीते अंतर पारयो जत देखो तत दुख की राशी अजो ना पते आए निगम पहे साखी गोतम नार उमा पत स्वामी सीस धरन सहस पग गामी इन दूतन खल बद कर मारियो बड़ो निलाज अजू नहीं हारियो कह रवदास कहां कैसे कीजै बिन रघुनाथ शरण कहां की लीजै एको अंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त वजूनी सह भंग गुर प्रसाद राग टोडी महला चौथा कर पहला हर बिन रह न सकै मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहुर न भवजल फेरा रहा हो मेरा हीर है लोच लगी प्रभ केरी हर नैनो हर प्रभ हेरा सतगुर दयाल हर नाम दिरलाया हर पादर हर प्रभ केरा हर रंगी हर नाम प्रभ पाया हर गोविंद हर प्रभ केरा हर हृदय मंतन मीठा लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा लोभ विकार जिन्ना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा ओए मन मुख मूड अज्ञानी कहिए तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुरमस्तक भाग लखेरा टोडी महला पंजवा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद संतन अवरना काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाक स्वामी रहाओ ऊच समाना ठाकर तेरो अवरना काहू तानी ऐसो अमर मिलो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी निरपा होए रहे लवेक नानक हर मनमानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुवारी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओढ़ तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नव खंडन को राज कमावै अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जा को कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे को अंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दै दिस तायो माया मगन स्वाद लो मोहयो तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत नाहि मन लायो बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को पर गृह जोहन जायो चरण कमल स्यो भाओ ना कीनो नह सतपुरख मनायो तावत कौ तावै बहु पाती जो तेली बल्द परमायो नामदान इस नान ना कियो एक निमख ना कीर्त गायो नाना झूठ लाए मन तोखियो नह बुझियो अपनायो पर उपकार ना कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ठ मतवारो मदमायो करो बेनती साध संगत हर भगत वच्छल सुन आयो
नानक भाग परयो हर पाछै राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया अनक सा सिंगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया रहाओ। ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन्य संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर आपरन सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख बेख दुख पाया। सारो दिन समझूरी करता तो मुसले शराया खेद पयो बेगारी न्याई कर कै काम न आया। पयो अनुग्रह जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निद बसुर दे हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ। दास तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो महापत ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तहारो पावो जो तू देहे तही एहो तृप्त या नकत हूं तावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगले रण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है। सदा सदा हम शोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवा कर दूजा दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कशु मेरा संग ना चल मिले कृपा गुणगाम रहाओ। राज माला नेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताए ताए बहुविद कौतावे सगल निरार्थ काम। बिन गोविंद अवर जे चाहो दिसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम। टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ। नाम जात नाम मेरी पत है नाम मेरा परिवार है नाम सखाई सदा मेरा संग हर नाम मुको निस्तार है। बिखे बिलास कहियत बहुत तेरे चलत न कछु संगार है इष्ट मीत नाम नानको हर नाम मेरा पंडार है। टोडी महला पंजवा नीके गुण गाओ मिट ही रोग मुखी उजल मन निर्मल होई है तेरो रह इहां उहां लोग रहाओ। चरण पखार करो गुर सेवा मने चरामो भोग छोड़ आपत बाद हंकारा मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग कहो नानक एक बिन दूजा अवर ना करने जोग। टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर ना सूजे दूजी ठाहर हार परयो तौ द्वारी लेखा छोड़ा लेखा छूटे हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख्शिंदु सदा मेहरबाना सब ना दे आधारी नानक दास संत पाछे परयो राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा रसना गुण गोपाल निद गायण सांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायण जन्म मरण दोहूं ते छूटे पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचारियो दास गोविंद परायण अबनासी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी

काल जाल जम जोहे न साकै सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किश निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवां किरपनो तन मन किलविख भरे साध संग भजन कर स्वामी ठाकन कौ इक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस आराधे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहै ओए ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवां हर के चरण कमल मन त्याओ काढ़ कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगड़ न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण करण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवां हर हर नाम सदा सद जाप तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नियाप रहाओ जिसके से फिर तिन ही समाले बिन से सोग संताप हाथ दे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेरवाना दया तारी हरनाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका वड प्रताप टोडी महला पंजवां स्वामी शरण परे।

दरियाओ तू देहांत तू बिस्यार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुश खबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नेकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना आसपात।

राग सुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो मन संपटो जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सरे अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै हौसला।

अंतरवसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बांधया सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़ियां पासो चितवियां हां, टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जियां खावणे बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईया अवर सियाण पकित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंगै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, जे गुण होवै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई, आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मारने वारिया सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा, हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी, इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाउ देवे दिखिया, चल ऐ सतगुर पाए पवे ना पीखिया। जां को महला हजूर दूजे नवे किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस, कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे सारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी। पांडा आत्म लीन तोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी। मत को जाने जाए अगै पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। अमृत हर का नाउ आप वरताए सी, चलिया पत स्यों जन्म सवार। वाजा वाए सी मानस क्या विचारा, त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल सब कुलतार सी।

तेरा सदड़ा सुनी जय भाई जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ न होवई जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कांडी है जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुंडाया जोग ना सिंगी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कहिए सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसाणी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेट ता सहसा टूट तावत वर्ज रहाई है निजर चर सहे तुन लागे कर ही परचा पाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है। वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपो पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जो जुग तौ पाई है।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जलथल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सहो तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सुही महला चौथा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो ला जन के। सुही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थर सेव सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस माने, बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनांगत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभु लोच पूर जन तुम गा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभु स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटाऊं सद घूमगा।

मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर तुठै हर उपदेसिया, हर पेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद आणी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो, मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सवलाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सतसंगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा, हर हर करै नित कपट कुमावै, हिरदा शुद्ध ना होई, आन दिन कर्म करै बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरै रंग कदे ना चढ़ै, जे लोचै सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा।

बहुत चितराई मनुआ दे दस्तावे हो मैं ब्यापया शब्द ना चीन फिर जूनी आवे नानक नजर करे सो बूजे सो जन नाम ते आए गुर प्रसादी एको बूजे एक समाए समाए सोही महला चौथा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोजाई हर हर नाम पदार्थ पाई मेरा मन हर हर सांत वसाई तिसना अग्न बुझी खने अंतर गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ हर गुण गावा जीवा मेरी माई सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई हों हर पर प्यारा टूंड टूंडाई सत्संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेला हर पाई सुही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए गुरमुख हर हर नाम समाए हर रंग राता मन रंग माने सदा आनंद रह दिन राती पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ हर रंग को लोचे सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मन मुख मुग्ध नर कोरा होए जे सो लोचे रंग ना हो वै कोई नदर करे ता सतगुर पावे नानक हर रस हर रंग समावे सुही महला चौथा जे वाह रस रही अगाए गुरमुख पीवे सही समाए हर रस जन चाखो जे पाई तौकत अनत साध लो भाई रहाओ गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मुरार मन मुख हर रस चाखिया ना जाए हों मैं करे बहुती मिले सजाए नदर करे ता हर रस पावे नानक हर रस हर गुण गावे सुही महला चौथा कर शेवा एको अंकार सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाए हर किया कथ कथा सुनो जन पाई जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्त निमख एक गाए पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पै पगयाए नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक शिपा कहै बुलाए खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े हर नाम देव लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए जन नानक तिन को अंधन परसे जय कृपा करे हर राए सूही महला चौथा तिन्नी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा तिन की बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ तुर भगत जना को बख्सिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे ते सहलत पलत मोहकारा से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा तिनकी सेवा ते हर पाई है सिर निंदक कै पवे इशारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा चहो पीड़ी आद जुगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सुही महला चौथा जिथे हर आराधिया तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया ना जाई हर तन संचिए पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है होरत है होरत उपाए हर तन कितै ना पाई हर रतने का वापारिया हर तन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाके हर तन लया ना जाई हर तन रतन जिवे हर माणक हर तने नाल अमृत वे लैवत हर भक्ति हर लिवलाई हर तन अमृत वे लैवत का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुट नाही
हालत पलत हर तनै की भगता कौ मिली वडियाई हर तन निरपौ सदा सदा असर है साचा एहो हर तन अग्नि तस्करै पाणी है जमदूतै किसै का गवाया न जाई हर तन का ओ चक्का नेड़ ना आवई जम जा गाती डंड ना लगाई सागती पाप करके बिखिया तन संचिया तिन्ना एक विख नाल ना जाई हलते विच सागत दुहेले पए हथों छुड़क गया अगे पलत सागत हर दरगे ढोई ना पाई इस हर तन का साहो हर आप है संतो जिसनों दे सो हर तन लद चलाई इस हर तन का तोटा कदे ना आवई जन नानक कौ गुरसो जी पाई सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवै सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिसते पाइए परम निधान जो दूजे पाए सागत कामना अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे सो निफल सब अगे

दे, उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सूही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंत जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाने

तू करता सब किछे आपे जाना, क्या तुद पै आख सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहेब तू अंतर की बिद जाना है, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड्याई तू है जाणै, सब तुदनो नित त्याए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए, मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी, विचहु मैं कार कमाई, जिन किए तिसै न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, हौ मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख भारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हौ बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो, नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो, सुही महला चौथा, कीता करना सरबर जाई, किश कीचै जे कर सकी, अपना कीता किछु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखियै, मेरे हर जियो सब को तेरै वस, असा जोर नाही, जे किश कर हम साकै।

जन नानक कौ हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान। राग सूही महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बाजी घर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई। सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक ओंकारा। कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कत गयो ओ काते आयो रहाओ। जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते एकंकारा। सहस घटा मैं एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रगास। परम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एकंकार। ओह अविनाशी बिन सतनाही ना को आवै ना को जाही। गुर पूरै हौं मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई। सूही महला पंजवां कीता लोड़ै।

तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कमन करे प्रतपाला रहाओ। जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारै कछु ना पाइयै, साच लगै ताह मैं जाइयै। जिसनो लाए लय सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद पावै तायाणै रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभ सदा ते आए। सुही महला पंजवा, तन सोहागन जो प्रभु पछानै। मानै हुक्म तजै अवमानै, प्रेसे राती रलिया मानै। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लाज लुकानी रहाओ। सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ पावै। सा सुहागण अंक समावै, गर्भ खेली महल ना पावै। फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै। बिनो करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहया भरपूर। जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवा। गृह वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर कौ लोड़ी। कवन कहा गुण कंत प्यारे, सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ। सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तम बोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे। जा पिर कर आवे, गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिर सुख पाया सूही महला पंजवा उम क्यों हियो मिलन प्रभताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीर निमानो मिल साजन तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सदजा गंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावाओ क्या कहरी जावाओ बिदगित पावाओ दरसारे। मित नहीं पाईए अंत न लहिए मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभात दे निस्तारे सुही महला पंजवा करती जा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता महला पावे कहतो पहुता जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सारहाओ। पेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट ना आवे। अतीत सदाए माया का माता मन ही प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझै ना एना माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा साज जना का दर्शन जीठा। कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै। तौ किश पाईए जौ होइए रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना रहाओ। सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै। भरमे पूला सख्त फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता रहाओ। जिस पाहण का उठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता। गुनहगार लूण हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता सुही महला पंजवा।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सुही महला पंजवा, से संजोग करो।

जिस कृपा करै बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवन हार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चहारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सुही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से, गुर पूरे मिल पापत जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदे रचियो मूड़ा।

दर्शन कह लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई कर वासना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोबाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए। सूही महला पंजवा हर का संत प्राण तानु तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगलते जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई। ताजा मान सरणी परो हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो जन का संग मांगो। नानक तो प्रभ दया करो दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रबेनती साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना जप मन गोबिंद एक है अवर नहीं को लेख है। संत लाग मने छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया निज मंदिर प्रिया तहां आनंद करिया। न मरिया न जरिया कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सुही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा पेखै खुशी भोगन ही हारा। सब रस लैत बस्त निरारा वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा नानक रे।

कर लो त्रमराया, ग्रह अंध कु पाया, पावक सगराया, गही ओढ़ साधाया, नानक हरते आया, अब मैं पूरा पाया। राग सूही महला पंजवा कर छेवा एको ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतिया, मिले नाम आधारा, उठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा, भगता की टेक तू संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ, सच तेरी सामगरी सच तेरा दरबारा, सच तेरे खजीनिया सच तेरा पासारा, तेरा रूपया गम है अनूप तेरा दरसारा, हम कुर्बानी तेरिया सेवका जिनहर नाम प्यारा, सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम्या पारा, गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरणा को बलिहारा। राग सूही महला पंजवा कर सतवा एको ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाए, जिसनो होए दयाला, साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाल।

मेरे राम हौसो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिरै बिल लाते, ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता। तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संतहो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवा, जो किश करै सोई प्रमानै। ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई। जिन प्रभ के चरण पराते, मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई। भगतां बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरै, जमता कै नेण ना आवै। जन्म जन्म का विछड़िया होवै, तन हर स्यों आन मिलावै। माया मोह परम पौ काटै, संत सरण जो आवै। जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक वर्णो, जो प्रभु अपने पाणे। कहो नानक जिन सतगुर भेटिया, से सब ते पए निकाणे।

प्यास चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहू काची दे आनी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्द अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा पाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिन्ना के कामा मेरे राम हर जन कह

ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्या

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जिस दया करे प्रभ आपे, दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक सादर वाला। राग सूही अष्टपदिया महला पहला, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना, रहाओ सहज सिंगार कामन कर आवै, ता सुहागण जां कंतै पावै, ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहेब सिमरिया जाई, सुरत मत नाही चतराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई, खरी सियाणी कंत ना पाणी, माया लागी परम पुलाणी, हौ मैं जाई ता कंत समाई, तौ कामण प्यारे नवनिद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गैले हो प्रीतम प्रबराया, पणत नानक सौ है पी होसी, जय पावै प्यारा तै रावेसी। सूही महला पहला, करनावा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंब का, थोड़िया दिन चार जियो, विणना में परम पुलिया, ठग मुठी कूड़े आर जियो, सच्चे सेती

तिन मुख नाम न उपजै, दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बुझै अपना, से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चित न आवई, फिर फिर लगै दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै, ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबी है, सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा, खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवै जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है, नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होनिया, गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुच्ची है, बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर ते आ, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारे आ, सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है, सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना विसरै, निदारा आधार जियो। सुही महला पहला, काफी कर दसवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब, गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब। जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार, वखर सच लै पथ पाए दरबार। सतगुर शब्द पै रहाओ, मन तन सच सलाहे। साचे मन पाया, लाल रत्ता मन मानिया, गुरपूरा पाया। हौ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै, तू वसै मन माए सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए, आखो के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल, प्रीत में अपना जे चलै गुण नाल, नाही दुख संतापना। मन मुख परम पुलाना, ना तिस रंग है। मरसी होए विडाणा, मन तन भंग है। गुर की कार कमाए, लाहा कर आणिया। गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास, जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास। हर गुण गावसी, सूही महला पहला। ज्यों आरन लोहा पाए, पन कढ़ाई है, त्यों साक्त जोनी पाए, पवै पवाई है। बिन बूझे सब दुख, दुख कमावना, हाँ मैं आवै जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखण हार, हर नाम ते आईऐ, मिलै तुझे रजाए शब्द कमाईऐ। तू कर कर वेखै आप, देह सो पाईऐ। तू देखै थापो थाप, दर भी नाईऐ। देही होवग खाक, पवन उडाईऐ। इहो किथै कर औताक, महल ना पाईऐ। देहो दीवी अंध कोर, कब मोहाईऐ। गर्भ मुसै कर चोर, किस रू आईऐ। गुरमुख चोर ना लाग, हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग, जोधी पाई है। लाल रतन हर नाम, गुरसुरत बुझाई है, सदा रह निकाम जे गुरमत पाई है। आराध्य है हर नाम, मन वसाई है, नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला, मनो ना नाम विसार, अहन सत्याई है। ज्यो राखै कृपा तार, तिवै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम, लखटी टोहनी, रहो साहिब की टेक, ना मोहै मोहनी। रहाओ जै देखो तै नाल, गुर दे खालिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तिवै रजाए परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागै, मरना आए कै। जन्म मरण परवान, हर गुण गाए कै। हौ नाही तू होवै, तुद ही साजिया, आपे थापो थाप शब्द निवाजिया।
देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रया समाए सो विस्माद पया। तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है। मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे। राग सुही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद। नामै ही ते सब किश होवा बिन सतगुर नाम ना जापै। गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै। कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाही आपै। गुरमुख होवै ता एको जाने हौं मैं दुख ना संतापै। बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे सिउं लिवलाई शब्द चीन आत्म पर गासिया सहजे रहा समाई रहाओ। गुरमुख गावै गुरमुख बूझै गुरमुख शब्द बिचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कार्य सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावै बेखटे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुरियत प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चलै सतगुर पाए साचा शब्द सिबत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखै हम मैं विचों जाए आपे दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिप्त साचा रंगराता गुर कै सहि सुभाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोलै बिख बीजै बिख खाए जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कमन छड़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नामन गुरमुख आप बुझाए आठ सठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए तितना तै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नामल लगे ना लाए सच्ची सिफत सच्ची साला पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा द्रुवत कहन ना जाए हुक्म होवै तां निर्मल होवै। हम मैं विचों जाए गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा यगन बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रया समाए। हर का नाम सत कर जाने गुर कै पाए प्यारे सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे। एको सच्चा समय वरतै विरला को विचारे आपे में लय ता बक्से सच्ची भगत सवारे। सबो सच सच सच वरतै गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरतै गुरमुख आप पछाणे। नाम ते आए ता सतगुर पाए जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किश होवै जे विचों आप गवाए। सूही महला तीजा काया कामण अत सवाले ओ पिर वसै जिस नाले पिर सच्चे तेसदा सुहागण गुर का शब्द संभाले। हर की भगत

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला, काया का मनसदा सुहेली गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाई है गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावै आपे तोलनहारा, एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाइए नाही नाम पाइए गुर बिचारा, गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई, काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी, विण नावै दर ढोई नाही तां जम करे खुवारी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी, राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो, रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजा पायर चन, तिसना भुख ना उतरै अंधन जलत फेरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, आप डुबे कुटम्ब स्यों सगले कुल डोबन, निंदा पली किसे की नाही मनुख मुग्ध करन, मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन, ए मन जैसा

मेरे साईं नानक का जियो पिंड गुरु है, गुरमिल त्रिपत अगाई नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गोसाई राग सुही महला चौथा अष्टपदियां कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा ने हो लायक प्रीतम अपने मन मन होए निहाल जाकर देखा सामने मैं हर हर नाम विसाहो गुर पूरे ते पाया अमृत अगम अथा हो रहा हो हाँ सतगुर वेख विकसिया हर नाम में लगा प्यार कृपा करके मेलिया न पाया मुख द्वार सतगुर बिरही नाम का जे मिले ता तन मन दे जे पूर्व होवे लिखिया ता अमृत सहज पिए सुतिया गुरसा लाही है उठदिया पी गुर आलाओ कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हो ताके तोवा पाओ कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो प्रीतम दे मिलाए सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सह सुभाए सतगुर सागर गुण नाम का तिस देखण का चाओ हाँ तिस जीव बिन देखे मर जाओ ज्यो मछली बिन पानी है रह न कित पाए त्यो हर बिन संत न जीवई बिन हर नामे मर जाए मैं सतगुर सेती परहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ हर हर नाम रतन है गुर तुठा देवे माए मैं तर सच्चे नाम की हर नाम रहन लिवलाए गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए अकथ कहानी प्रेम की को प्रीत में आखे आए तिस देवा मन अपना निम निम लागा पाए सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अबनासी पुरख है समय रह समाए राम नाम तन संचया साबत पूंजी रास नानक दरगह मन्या गुर पूरे साबास राग सुही अष्टपदियां महला पंजवा कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद उर्ज रहे हो बिखिया कै संगा मने व्यापत अनक तिरंगा मेरे मन अगम्य गोचर कत पाई है पूर्ण परमेश्वर रहाओ मोह मगन में रहया व्यापे अतृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसै क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजै महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे केवारा जान ना पाई है प्रभ दरबारा आसा अंदेसा बंद पराना महल ना पावे फिरत बिगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास ज्यो जल बिन मीना कछु सियान पयुगत ना मोरी एस एक आस ठाकर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो किरपाल साध संग पाया नानक त्रिपते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अग्न शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर।

चल कै मैं तकी तो सरनाए जियो, मैं आसा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। एक मार्ग चले भाई अड़े गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो। इओ पावे हर दरसा वड़ा नै लगे तत्ती वाओ जियो, हाँ आपो बोल न जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया गुर नानक किया पसाओ जियो, मैं बहुड़ ना तृष्णा पुखड़ी हाँ रजा तृप्त आगाए जियो। जो गुर दिसै सिखड़ा तिस निम निम लागौ पाए जियो। राग सूही संत महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पर जोबर मैं मत पे यड़े कर पाहुनी बलराम जियो। मैं लिय अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जियो। गुण सार ना जानी परम पुलानी जो बनबाद गवाया, वार कर दर दर्शन नहीं जाता फिरका सहजना पाया। सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी, नानक बाल तन रा डेपा बिन फिर तन कुमलानी। बाबा मैं वर देहे मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो, रव रहे जुगचार त्रिपवन बाणी जिसकी बलराम जियो। त्रिपवन कंतर वै सोहागण अवगणवंती दूरे, जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे। हर की नार सो सर्ब सुहागणो रांडना मैं ले वैसे, नानक मैं वरसा चा पावे जो जुग प्रीतम तैसे। बाबा लगन गणाए हम्पी वहियां साहुरे बलराम जियो, साहा हुक्मर जाए सो न टले जो प्रभ करे बलराम जियो। किरत पया करते कर पाया मेट न सके कोई, जानी ना नरहने केवल रव रहा त्यो लोई। माए निरासी होए विशुन्नी बाली बाले हेते, नानक साच शब्द सुख महली गुरचरणी प्रभ चेते। बाबल दितड़ी दूर ना आवे कर पे है बलराम जियो, रैसी वेखा दूर पिरावी कर सोही है बलराम जियो। साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परदाने, संजोगी मेला थान सोहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए, नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए। राग सुही महला पहला शंत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम कर साजन आए साचे मेल मिलाए। सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया, साई वस्त प्राप्त होई जैसे ती मन लाया। आन दिन मेल पाया मन मानिया कर मंदिर सोहाए, पंच शब्द तुन अनहद वाजे हम कर साजन आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभु पावो सोहे लड़ा जुगचारे। अपने कर आया थान सुहाया कार्य शब्द सवारे, ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिपवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजन आया। मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरा परम तत्व विचारो। जंत पेख तू सफल्यो दाता सिर सिर देवन हारो, तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना। सुनो सखी मन मोहन मोहया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा अगम्या पारा तुद बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए। काल बिकाल पहे देवाने मन राख्या गुर ठाए, नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए। राग सुही महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आवो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। कर अपन खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम।
ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਈ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ ਐ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਕਰ ਆਏ ਕਰ ਆਏ ਅੜੇ ਸਾਜਨਾ ਤਾਂ ਤਨ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਰਾਮ ਹਰ ਮੋਹ ਅੜੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਠਾਕਰ ਦੇਖ ਰਹਸੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਸੰਗ ਰਹਸੀ ਖਰੀ ਸਰਸੀ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਰੰਗ ਰਾਤੈ ਅਵਗਣ ਮਾਰ ਗੁਣੀ ਕਰ ਛਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੈ ਤਸਕਰ ਮਾਰ ਵਸੀ ਪੰਚਾਇਣ ਅਦਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਵਰ ਪਾਇਆੜਾ ਬਲ ਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ ਪਿਰ ਰਾਵਿਆੜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਲੀ ਰਵ ਰਿਆ ਨੈ ਦੂਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਘਟਘਟ ਸੋਈ ਤਿਸਕੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਮਰਿਆ ਡੋਲਿਆ ਮੋਹਲਿਆ ਪਾਰਾ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜੋਗ ਸੰਜੋਗੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਈਐ ਪਿਰ ਉਚਰੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਤਿਹੋ ਲੋਆ ਸਿਰ ਤਾਜਾ ਰਾਮ ਹਉ ਬਿਸਮ ਪਈ ਦੇਖ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਿਆ ਗਾਜਾ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੀ ਸਾਣੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਠਾਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਰਵਾਣੋ ਪਤ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਸੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿਆ ਪਛਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਨਾਸੀ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਹੰਦੜੈ ਲਾਇਆ ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਕੜ ਚਾਨਣਾ ਤਨ ਚੰਦੀ ਪਾਇਆ ਚੰਦੋ ਦੀ ਪਾਇਆ ਦਾਨ ਹਰ ਕੈ ਦੁੱਖ ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਗੁਣ ਜੰਝ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋਹੈ ਪਰਖ ਮੋਹਣੀਆਂ ਲਿਆ ਵਿਵਾਹ ਹੋਵਾ ਸੋਭ ਸੇਤੀ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤ ਹੰਦੜੈ ਲਾਇਆ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ ਇਹੋ ਤਨ ਜਿਨ ਸਿਉਂ ਗਾਡਿਆ ਮਨ ਲੀਅੜਾ ਦਿੱਤਾ ਲੀਆ ਤਾਂ ਦੀਆ ਮਾਨ ਜਿਨ ਸਿਉਂ ਸੇ ਸੱਜਣ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਦਿਸ ਆਇਆ ਹੋਹੇ ਰਲੀਆਂ ਜੀ ਸੇਤੀ ਗੈ ਰਹਿ ਸਗਲ

सार न जाना तू वरदाना कर मै रमत साई कृपा की जय सामत दी जय आठ पैर तु दिहाई गर्भ न की जय रेण हो विजय तांगत जी अरे तेरी सभी उपर नानका ठाकुर मैं जेही कणचेरी राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम पिर हम बहुरिया राम तुम वडे वडे वडूचे हम इतनी कलहुरिया राम हाँ किश नाही एको तू है आपे आप सुजाना अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना चरण है सरणी दास है दासी मन मौलै तन हरिया नानक ठाकर सर्व समाना आपन पावन करिया तुझ ऊपर।

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्हि सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंधप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोपरा मेरा सर्व रया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ कौ बलिहार है नानक सतगुरबाणा। ऐसा गुरबट भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम। जन्म जन्म के किल वखे उतरे हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहुड़ जोड़ ना आई है गुर चरणी लागे परम पौ भागे, मन चंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै, नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापै। हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसे आए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वह जाई राम। अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए। पूर रहया कड़कट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम। हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई। परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्श तेरा। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फांसी राम, कटिया जम फांसी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना। हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहिते आना, काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभ कृपा कीजै हर गुण सुनिए अबनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग। एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम। एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला, सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकर दीन दयाला।
मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सोही महला पंजवां हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावै राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावै राम। हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी कथ कहानी। भला संयोग

कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान है अवगुण को ना चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कट कट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हां बिसम भई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हां चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आद अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सबहू ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोबिंद सरण आई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर नेह चल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अबनासी हौ तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन ध्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया कर अपने मोही दूजै पाए मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पदार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उरतार आग्याकारी सदा सुहागण आ मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सुहवीए निमाणी है सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवारै अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचायो आकाश पताला हुक्मे तरती साजियान सच्ची धर्मशाला आप उपायख पाएंदा सच्चे दीन दयाला सब नारिक संभाहेंदा तेरा हुक्म निराला आपे आवरदा आपे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सुहबता सोहागणी जा मन लह सच नाओ सतगुर अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही थाओ ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे ना हो वई एन सलागे पाओ नानक सोहागण का क्या चहन है अंदर सच मुख उजला खसमै माहे समाए महला तीजा लोका वेह सुहवी सुहा वेस करी वेसी सहो ना पाई है कर कर वेस रही नानक तिन्नी सहो पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी ज्योतिष पावै सो थी है इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सचे लख्या पारा

जिस तू मिलै सो तुद मिलै, सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूह विए सूहा सब संसार है, जिंदुरमत दूजा पाओ। खिन मैं चूट सब बिन सजाए, जो टिके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै कर आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिलिया हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत न पाया जाए। इस लैंदे बिलम ना हो वही, रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहै वे सुलभाए, शब्द सच्चा रंग लाल कर पह पाए। सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आपो पाया ने आप कीमत पाई, तिसदा यंत्रा जा पई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजे परमाई, मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई। जो तिस पावै सो थीऐ, सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सुहै वेस कामन को लखनी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै, मन मुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया, ते सतगुर मिलै पतार। सूहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जानै, ताजा मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देखना सुनै अपाखै, सो कत जानै पीर पराई, जाकै अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवन अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना

क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रवदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई। एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा। घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी। कह रवदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो राओ, बावल होई सो सहलो राओ। तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस। तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछा पछतानी। रहाओ काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली। पिरै बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए। विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल।

अगमा गोचर लाख्या पारा, चिंता करो हमारी। जल थल मैयल भरपुर लीना, कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, गुण गावन तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे। जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान। आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान। तू दाता नाम प्रमाण, ऐसा नाम।

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख वखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाणे से मनमुख कहिए नारो वार ना पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द समाले हर जन माया माहि निस्तारे नानक भाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तो लिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसै मन आए ता को जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे

सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेव ना करा ते नर भागहीन दोचारी ओए जन्म ओए फिर मरा जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुरमत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोथ है कल युग खेवट गुर सब तरो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख थिरखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ काया नगर मैं राम रसी उत्तम क्यों पाई अब दे जन करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो राम नाम रस राम रसायनो हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सब रैनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ अन क्यो पाव चितवी है बहु तेरे सा होवै जे बात हो वैनी अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी मन की मत आगो हर जन एह बात कठैनी आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी मत समत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी जन नानक प्रभ करते स्वामी ज्यो पावै तवै बुलैनी। बिलावल महला चौथा अनद मूल त्यायो पुरखोत्म अन दिन अंध आनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके छंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड माया के बद्धक विच माया फिरै फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे ज्यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे सेव दरे वड पागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै ज्यों राखै तवै रहंदे राग बिलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहया जल थले राम नाम नित गाइए हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोए मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरियै बिखिया संसार सतगुर बोइथ पावै पार रहाओ पवन चुलारे माया।

मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिलै ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साद, जो गूंगा मन में बिस्माद। आनंद रूप सब नजरी आया, जन नानक हर गुण अक्ष माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, धरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जा कावड़ प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा जानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक, अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे। राखण कौ तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे। जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी। सर्व कला परपूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर। सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की। जिन्हें अपना प्रभ जाता, हर नाम आराधे नाम वखाणे। हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे। पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी। तेरे जन देखण पावा, वड भागी से काढ़िए प्यारे। संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल। मने होवे परगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे। चूके जमकी काणे, तना प्राप दर्शन नानक। जो प्रभ अपने पाणे, ऊंच या पार।

कनेरे, पशु प्रेत मुगत कौतारे, पान पारो तारै, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारै। बिलावल महला पंजवां, बिखै वन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे, बुड गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महतना शक्ति काई सादा दासी थियो, नानक से दर सो बावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संगना चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते, इन संग सुख नाम पाया। तन तन हर सा जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वट पागणी सखिए, संता संग समाई है, तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै, चरण कमल निवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना, निश्चर सरणी पाई है। प्रेम बिछो ना मोह व्यापै, नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे, रतड़े सह सुभाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम, अंत मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच पुजाए, नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया, कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। एक रूप सगलो पासारा, आपे बनज आप ब्योहारा, ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए, रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा, आपे जल पा आप ही तिरंगा। आप ही मंदिर आपै सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपै जोग आप ही जुगता, नानक प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवां, आप पावन आप सुधरना, आप करावन दोष ना लेना, आपन बचनो आप।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हे बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन धन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तो पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापया, शीतल पय हर हर जस जापया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गै लीना, जय जय कार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भए परसीना। बिलावल महला।

नीच खन में थापै है कीमत कहीं ना जाई है ठाकर परतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया कारण कारण समर्थ प्रभ तेरी सरनाई हर दिन सरैण नानक जपै साध साध बल जाई बिलावल महला पंजवा जल ढोव एह सीस कर पग पख लावो बार

कमल मंतन बसे प्रवयग में अपार। बस्त कमावत सब सुखी किश उन्ना दिसै, संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै। जय जयकार सबै करै सत थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवां हर हर हर आराधिया, होइय आरोग रामचंद की लष्टका जिन मारिया रोग। रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचै भोग, साध संगत कह वारण मिलया संयोग। जिस सिमरत सुख पाई बिन सह बेहोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा, एको अंकार सदगुर प्रसाद। अवरयो पाप सब त्यागया दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया। गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हारे राखिया अपनी करमया। रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया, की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा कर धर मस्तक थापिया, नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित वह साध जान सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद, जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा, दीनो प्रभ आप प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप। राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागे, नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधिय, मिल साध समागे उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै, तंत मंत न जो है तित ताख न लागै। रहाओ काम क्रोध मदमान मोह बिन से अनरागै, आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवा जी जूत वस प्रभु कै, जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना।

हाथ रहाओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा आरा दया होए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जमजाल। दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम, सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम। रहाओ जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ प्रताप। बिलावल महला पंजवा।

तन तन कलातो सब देख अभमाना, बिन नामै किछ संग ना जाना रहाओ। कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी। खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल। गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे। दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए। तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला। नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुखथिया। सूकर स्वान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला। गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ, बंधन बांध्याई जाइऐ। गुर सेवा ते लहै पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ। साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दर सोए। सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै। हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास। रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका। ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए। बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जग कौआ, मुख चुंच ज्ञान। अंतर लोभ झूठ अवमान, बिन नामै पाज रह निदान। सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै। बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ। गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो। साचै नाय वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै। मन का अंधा अंध कमावै, दर घर महल ठौर कैसे पावै। हर जियो सेवियै अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी। तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै। आपै आप मिलै चुकै अभमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै। सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई। कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई। दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई। गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार। नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां घर ग्यारवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया। गुरमुख परचै कंचन काया, निरपव ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ। एक गिरो दस द्वार हैं जाके, अहनसो तस्कर पंच चोर लगैया। धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया। कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया। तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया। हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया। जम जागाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया। हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया। गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाणै, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਉ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਭਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਣ ਖਿਣ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤ ਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਹੀਆ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵੇ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋਐ ਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਪਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਣ ਖਿਣ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਉ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर पवन करै बुझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन शांत ना आवै, मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेर जो सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण परै सो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया। नामा जय देव कबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, धन धन्ना जट सहन मिलया हरदैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। सुन गुरबचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हौ आकल बिकल पई गुर देखे। हौ लोट पोट होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिराओ सब दे दिसंतर। मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देओ गुरे आगे। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया, कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा। हृदय अंतर मंत्र मीठ लगैया, मस्त काट देओ चरणा तल। जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया, चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै। गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वछल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगै जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सकै बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश की जय, सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया। कियो सिंगार मिलन कह ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करै तेरे वस पैया। दयाधीन करो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का। खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी। जो चात्रक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगै सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मंतन एक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया। वैदिक नाटक देख भुलाने, मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया। हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गैया। जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिने अवर ना पावै। बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै। हौ तिस विटो बल बल घूम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जा सत सत सतगुर शरण पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकर। महल ना पावै मनमुख परमैया, गुर गुर कर तो शरण जे आवै। प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया, कर कर क्रिया चार वधाए। मन पाखंड कर्म कपट लोबैया, बेसवै का बेसवा कै घर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठागर कृपा तारी। बहां पकड़ नानक कढ लैया।
राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी घर बारवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल आधार हौ जाओ सत बलिहार मन प्रीत लागी ताहे तज आन कतै ना जाहे। हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उधार पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत तज गए पाप बेकार हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद चख अंद पूर्ण साध नह डोली है इतियूत प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जमना पेखे नैन सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल प्रभ भगत।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप बहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड बिदी ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रेका नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मने लागे नाम लैण ना आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोह नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यो रखो चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोह निर्गुण गुण नहीं नह

कोई वाहे को लुणे को पाए खलहान, नानके अपना जापई कोई खाए निदान। महला पहला, जिस मन वसया तरिया सोए, नानक जो पावे सो होए। पौड़ी पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुर मेहरवान परम पौ मारिया। काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठे उर तारिया। नानक साधु संग जन मरण सवारिया, सलोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया, कूड़े कहन कहन पंच चोर तिन्ना घर मोहन। हो मैं अंदर सन सागत मुठे दुरमति, हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत परम लुटाया, बिकसो रचै रचन। दुष्टा सेती परहड़ी, जन से वाद करन। नानक सागत नरक मैं, जम बदे दुख सहन। पया किरत कमाम दे, जिव राखै तवै रहन। महला तीजा, जिन्नी सतगुर सेवया, तान निताने तिस। सास ग्रास सदा मन वसै, जम जोहे न सकै तिस। हिरदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस। हर दासा का दास होए, परम पदार्थ तिस। नानक मंतन जिस प्रभ वसै, हौ सतगुर बाणै तिस। जिनको पूर्व लिखिया, रस संत जना स्यों तिस। पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु, सो परमेसर सुनिया। सोई वर्तिया जगत मैं, कट कट मुख पणिया। बहुत वडियाइया साहेब है, नै जाही गणिया। सच सहज आनंद सतगुरु पास, सच्ची गुरमणिया। नानक संत सवारे पार ब्रह्म, सच्चे ज्यो बनिया। सलोक महला तीजा, अपना आप ना पछाणई, हर प्रभ जाता दूर। गुर की सेवा विसरी, क्यों मन रह हजूर। मनमुख जन्म गवाया, झूठे लाल चकूर। नानक बख्श मिलाया, न सच्चे शब्द हदूर। महला तीजा, हर प्रभ सच्चा सोहेला, गुरमुख नाम गोविंद। अंद नाम सलाहना, हर जपया मन आनंद। वडभागी हर पाया, पूर्ण परमानंद। जन नानक नाम सलाहया, बहुन नाम तन पंग। पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का, फिर शरण गुर आवे। पिछले गुने सतगुर बख्श लए, सतसंगत नाल रलावे। ज्यों मीहे उठे गलियां नालियां, टोबिया का जल। जाए पवे विच सुरसरी, सुरसरी मिलत पवित्र पावन हो जावे। ए वड्याई सतगुर निर्वैर विच, जित मिले तिसना भुख उतरे, हर सांत तड़ आवे। नानक हो अचरज देखो मेरे, हर सच्चे साहका। जे सतगुरु नो मन्ने, सो सबना पावे। सुध बिलावल बाणी भगतां की, कबीर जीओ की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, ऐसो संसार पेखना।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिवलागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनि उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जा कर दे बसै, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव नित ता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै, कुटल गांठ।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह पंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छिड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। एह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे दिन

ज्योत उपकरै दुख सुखासा, तिसका प्रवासा क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जापो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा प्रवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरत सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मैं सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लो हर तना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। तिन के चरण मलो हर दसना, शब्द पछाण राम रस पावो। ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, ते जन की वडियाई हर या वधाई। ओ कटै ना किसै की कटाई, एक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुरना। जन नानक हर दान एक दीजै, नित बसै हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पातशाह उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान, जो हर महल पावे गुरबचनी, तिस जेवड अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसै मन मेरे सब बिनस जाहे, जो रंग कुसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगह पावै तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस, चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बप्पड़ा। त्यों सत संगत मिल पतत परवान।

ओट नाम जपत मिटै पाप कोट रास दी हरे को नाम मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ।

सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति बैसनो रामदास मित नाही।

मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे, नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड महला।

पतन होए। जिस कौ राखै सिरजनहार, चख मारो सगल संसार। प्रभ अपने का पया विश्वास, जियो पिंड सब तिसकी रास। नानक को उपजी प्रतीत, मन मुख हार गुरमुख सद जीत। गोंड महला पंजवा। नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बिलायण। रहाओ नारायण मन माहे निवास, नारायण कटकट प्रगास। नारायण कहते नरक ना जाहे, नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार। नारायण कह तो जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण। नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद। नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप। नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण। बस्त अगोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गोंड महला पंजवा। जा कौ राखै राखनहार, तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है। साध संग जपै निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवच दास का सना हो, दूत दुष्ट तिस पोहत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल। हैपी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा। अचरज कथा महान रूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसे ना हो जाए, आज जुगादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परंपर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया। अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा। संतन कै बलहार है जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरणवण पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तहूर। राग गौंड।

कर नमस्कार पूरे गुरुदेव सफल मूर्त सफल जा की सेव अंतरजामी पुरख विदाता आठ पहर नाम रंगराता गुरु गोबिंद गुरु गोपाल अपने दास कौ रखनहार रहाओ पातशाह शाह उमराओ पति आए दुष्ट अहंकारी मार पचाए निंदक कै मुख की नो रोग जय जयकार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जपै गुरदेव भगवंत संगत के मुखी उज्जल पए सगल थान निंद के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बेपरवाहे सगल पै मिटे जा की शरण निंद कुमार पाए सब तरण जन की निंदा करे ना कोए जो करे सो दुखिया होए आठ पहर जन एक ते आए जमुआ ता कै निपट ना जाए जन निरवैर निंदक अहंकारी जन पल मानै निंदक वेकारी गुर कै सिख सतगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरतै हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ सर पर जाए नीत अरिया सतगुर तर तेरी कर कृपा रखो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पैज सवारी राग गोंड बाणी भगता की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले के सुनिया कहिया मिले असंत मष्ट कर रही है बाबा बोलना क्या कहिया जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले चख मारी बोलत बोलत बड़े बेकारा बिन बोले क्या करे बिचारा कहो कबीर।

करै अपने कर्म की गत मैं क्या जाना मैं क्या जाना बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तभी नर जागे जम का डंड मूड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चौदस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा परखोतम कट बिनसै गगन न जाए ले। मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहता हो कर मैं किन जियो दीन रे। हर मैं तन है।

कौ दीना कुंचर पोट ले नमस्कार बुझी नहीं काजी अंधार तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजहूना पतीना कह कबीर हमरा गोबिंद चौथे पद मैं जन की जिंद गोंड नायो मानस नायो देओ नायो जति कहा वैसे ओ ना हो जोगी ना अवधूता ना समाय न काहू पूता या मंदिर में कौन बसाई ताका यंतना को उपाई रहाओ नायो गृही नायो दासी नायो राजना पीख मगासी नाय पिंड ना रगतू राती नायो ब्राह्मण नायो खाती नाय हो तपा कहावै सेख नाय हो जीवै न मरता देख इस मरते कौ जे कौ रोवै जो रोवै सोई पत खोवै गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागद पर मिटै ना मंस गोंड टूटे तागे निखुटी पान द्वार उपर चिलकावै कान कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सरचंड बोकाल एहो मुंडिया सगलो दरब खोई आवत जात नाग

एक दोए मंदिर एक दोए बाट, हमको साखर उनको खाट, मूंड पलोस कमरबद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बुढ़द की टेक, सोन अंदली लोई बेपीर, इन मुंडिया न पज सरन कबीर, गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का हुए विनाश, आगे नरक यहां भोग बिलास, एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी रहाओ, सोहागन गल सो है हार, संत कौ बिख बिकसे संसार, कर सिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिरै बिचारी, संत भाग हो पाछ पर, गुर प्रसादी मारो डरै, सागत की हो पिंड परायण, हम कौ दृष्ट पर त्रखडायण, हम तिसका बहु जान्या पेओ, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेव, कहो कबीर अब बाहर परी, संसार कै अंचल लरी, गोंड गृह शोभा जा कह रे नाहे, आवत पैया खुदे जाहे, वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागे दोख, तन सोहागन महापवीत, तपित पीसर डोले चीत रहाओ, सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यो सूती, साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार, सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शन किशन हरी, जव लग प्राण तव लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे, सोहागन पवन त्रैलिया, दस अठ पुराण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे, सोहागन उरवार ना पार, पांच नारद कै संग बेदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे, गोंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, ना बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जारो तिसे जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै, रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोईऐ, सूत बिना कैसे मणि परोईऐ, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है, जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना, गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार, रहाओ नाचन सोए जो मन स्यो नाचै, झूठ ना पतिया पर चै साचै, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजार है सो दे, पांच पलीते कौ प्रबोद, नौ नायक की भक्त पछान, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात ना करै, इंद्री के जतन नाम उचरै, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अतरूप बिचखन, गोंड धन गोपाल धन गुरदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव, धन वे संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरखते हुए अनाद, जपिए नाम अन्न कै साध, रहाओ जपिए नाम जपिए अन्न, अंबे का संग निका वन, अन्न बाहर जो नर होवे, तीन पवन में अपनी खोवे,
छोड़ अन्न करे पाखंड, ना सोहागण ना ओहे रंड। जग में बगते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी।

अस्मेत जगने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सगत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सुनारा ज्यों बिखई हेरै परनारी कौडा डारत हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसे नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखिया था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशान, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहां करै संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जुगतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीट दास। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो 68 तीर्थ नावै, जे हो द्वादश शिला पूजावै, जे हो कूप तटा देवावै, करै निंद सब बिरथा जावै। साध का निंदक

जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

कोई पढ़ता सहसा करता, कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रहा समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कमन दर कहिए। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिए। जीव त्याने मरिए रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रह, किंते न मायंत न जानिया। तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही। क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निराशा। तव नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिए। जीवत आयो मरिए रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी। बाजे लोग सुने पत झोली मंगण कै ताई। पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे। गोरख सोजन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए। मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे। सिद्ध साध क्यार योगी जंगम, पीर पुरस बहु तेरे। जे तन मिला ता कीर्त आखा, ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह। ऐसे भगत मिले जन नानक, तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला, सुन मा शिंदरा नानक बोले। वसगत पंच करे नहीं डोले, ऐसी जुगत जो कौ पाले। आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे। अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत बाणी, सुन मा शिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए, निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है। पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन को आए। निहचो दे वड़ियाई, गुर तार तारन हारिया। देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा।
ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਓ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵੇਰਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਰ ਲਾਈਐ ਏਤ, ਤਨ ਕਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘੈ ਜੇਤ, ਅੰਤਰ ਪਾਹਿਤ ਸਹਿ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਐਨਸ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅਥਕ, ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ, ਜਿਤ ਦੀਵੈ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਰਹਾਓ।

रामकली महला पहला, सागर मैं बूंद, बूंद मैं सागर, कवन बुझै बिद जाना, उत्पो चलते आप कर चीना, आपे तत् पछाण, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मैं रहण रहण मैं दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख मैं नार, नार मैं पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, धुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन मैं जोत, जोत मैं मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला।

मेरे एक खैन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड़ भाग गुरसरनी आए हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझै बूझै मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरै से नकटे तन कस कस नक वड़ाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया। हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट

राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गते ही मेरे मन सतगुर सेव सुख होई जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापै कोई रहाओ काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी कृत कमाई मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना जिन दिया सोचित ना आवै मोहे अंध लपटाना जिन किया सोई प्रभ जाने हर का महलिया पारा भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा राम कली महला पंजवा पवो चरना तल उपर आवो ऐसी सेव कमावो आपस ते उपर सब जानो तो दरगह सुख पावो संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई सतगुर मिलो नवे निध पावो इन बे तत बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई सतगुर मिले है मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया जन नानक सत कुरबानी राम कली महला पंजवा आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी सदा आनंद गुर पूरा पाया तो उतरी सगल बेयोगनी एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तय हर हर हर रस भोगनी रहाओ स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलुगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जतकत पेखो हर गुनी नह शिव शक्ति जल नहीं पमना तह आकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का तहा निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबै अंब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचर जगश कहण ना जाई बसता गोचर पाई रहाओ मोल नाही कश करने जोगा क्या को कह सुनावे कथन कहन को सोजी नाही जो पेखे तिस बने आवे सोई जाने करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गतमित आपे जाने हरे आपे पूर पंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आ गाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की शरणाई राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है एह जग लूटिया ते बैरी लै बाधे सतगुर परमेसर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता श्री उपर रखवारा बेप्रवाह रहत है स्वामी एक नाम कै आधारा पूर्ण होए मिले ओ सुखदाई ऊन न काई बाता तत्सार परम पद पाया छोड़ न कत हूं जाता बर

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे ओ नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू, कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मैं पवन।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंध। एह तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नह बिन सैब नासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरे ना आवै जाया। राम कली महला पंजवां, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखै हो बीचार। राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारे ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद ना लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवारो रे रहाओ। प्रथमे वसिया सतका खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। दुतिया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक ऐ सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहुविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक ऐ मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। इउं किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां।

जप नाथ दिन रहन आई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगै टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचै लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पढ़।

जा कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा भेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुणतास, जी जन

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई राम कली महला पंजवां गहो कर।

आपस ऊपर रखे गुमान, जब उसको कोई मन पर हरै तब यो सेवक सेवा करै, मुख बेरावै अंत ठगावै, एक ठौर ओ कई ना समावै, उन मोहे बहुते ब्रह्मंड, राम जनी कीनी खंड खंड, जो मांगे सो भूखा रहै, इस संग राचै सो कछु ना लहै, ऐसे त्याग सत्संगत करै, वडभागी नानक हो तरै, राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व मैं पेख, पूर्ण पूर्ण रहा प्रभ एक, रत्न अमोल हृदय मैं जान, अपनी वस्तु आप पछान, पी अमृत संतन प्रसाद, वड़े भाग होवे तो पाईए, बिन जेवा क्या जाने स्वाद, रहाओ अठ दस बेद सुने कह डोरा, कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा, पशु प्रीत का संग रचै, जिसनी बुझावे सो कित बिद बुझै, जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान, बिगस बिगस अपना प्रभ गावे, नानक तिन जम नेण न आवे, राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित, हर तन रास निरास ए बित, काटी बंद हर सेवा लाए, हर हर भगत राम गुण गाए, बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे हर जनो, अपने गुरुदेव निवाजा, रहाओ

सदा आनंद न होवी सोग, कबू न व्यापै हमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा। परमगत पावै हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै ना तार। सगलो पावना चल संग, पव जल तरिय।

मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर राम कली महला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोय तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुरमत बिन सै।

पौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार, राम कली महला पंजवा, रतन जिवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान, सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कष्ट तोट न आवै, अंत नहीं हर पारावार रहाओ। कीर्तन निर्मोल हीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाध गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन, भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत, तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिस आप दिवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर

अवतार न जानै अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जानै, सुन सुन अवर वखानै रहाओ। संकरा नहीं जानै भेव, खोज तहारे देव। देविया नहीं जानै मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपना रंग करता केल, आप बिछोरै आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखै आखी। नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानका प्रभ आपे आप। रामकली महला पंजवा, किशु काजना कियो जान। सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म। किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे। तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूकै प्रभ तेरे रहाओ। रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखै ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुणपास। नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। रामकली महला पंजवा, रखन हर दयाल। कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधै जंत। मिलिया प्रभ गुर मिलमंत, जियन को दाता मेरा प्रभ। पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ। ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद, मन माहे पय आनंद। तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे पार। सुमत सार जित।

बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक छा प्राप्त करै। राम कली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहेब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा प्रवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम ते आए मन मेरे कार्य तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै या मिटाए मलीजै अंदिन त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करन करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

चक्र पेलो हर चरण कमलो सरनाय मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साई तना रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे काम क्रोध मसद ही चूरे करे बेकार जिया रे कह ताई गाफल संगनत सुवा जाई तरत तोह अनक शर जान कौडी कौडी कौ खाक सिर शान जिन दिया तसेरा चेतै मूल मिथ्या लोभना उतरै सूल पार ब्रह्म जप हे दयाल इह मन होवा सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै साज समाए राम कली महला पंजवा राजा राम की सरनाए निरपो पय गोविंद गुण गावतो साध संग दुख जाए रहाओ जां कै राम बसै मन माही सो जन दुत्तर पेखत नाही सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुर धरै सो दासां देसा काहे करै जन मरण की चूकी कान पूरे गुरु उपर कुर्बान गुर परमेसर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करै साध संग सो पवजल तरै अमृत पीवाओ साध प्यारे मुखी उजर साचै दरबारे अंध करो तज सगल बेकार नानक हर जप उतरो पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बै संतर भागै माटी कौ जल दै जस त्यागै ऊपर चरण तलै आकाश कटमै सिंध की ओ प्रगास ऐसा समर्थ हर जियो आप निमखना बिसरै जी भगतन कै आठ

सगले साज करत जगदीसै, ठगन हार अनठगदा ठगै, बिन मखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परमगत होए। रामकली महला पंजवां, जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की शरण आई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लखमी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखै ठगौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। रामकली महला पंजवां, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेख धोए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाइए साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देह तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवां, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवां, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन, एक

डी हुक्म बुझै सो योगी कहिया एक सस्यो चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत एव पाए नदरी आमदा सब किश बिनसै।

मनसा मार मन सहि समाना बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुर्लंभ है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामे होर पूज ना होवी भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पिछाणे संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावै आप गवावै दर साचै सोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल शब्दे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कटे अंतर करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक पेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सालाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी। अपनिया भगतां नो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम बिचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे पाई शब्द विचारी। जो प्रभ खोजै से ही पावे होर फूट मोए हंकारी, बादी बिनसै सेवक सेवै गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी, सतगुर

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै श्री वो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप आपो पाए अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई।

बाबा पाई, कोई कहे मैं तने पसारा, मोहे दिन हर हर आधारा। किन्ही कुगर नृत्य कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दिन हर हर हर त्याया। किन्ही सिद्ध बहुत चेट कलाए, किन्ही पेख बहुत हाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दिन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दिन हर हर हर सरणी। सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नामे ओ मन ना प्रबोदे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया। राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करिया, माटी का ले देहरा करिया। उक्त जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्भ मैं जिन तू राखिया। राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहाओ। जिन दिए तुद बाब महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी, जिन दिए

राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखी है प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर कै।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। करण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरण आई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन यान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाच लाए तराई। अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो कल अंधकार दीपाई। अंतर जामी जियन का दाता देख तृप्त आगाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली तृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचे दर्स समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो। आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जो बन सोत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मान बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभु जीव अपनी कृपा तारी। उधरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समराथया काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत का

लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। गुरप्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे तिवै चल है, जिन्ना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्यावहे। जिसरों कथा सुनाहे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब, जो पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करै गल्ला, गली किनै ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेज ना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित संगत सवाइया। कहिंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, विण सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहसै जियो मलीन है, कित संजम तोता जाए। मन तोहवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाए।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछलते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया

महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओड़ तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो कण उन्म बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सत बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो सलोक आस प्यासी मैं फिराओ कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सर्द अडंबरो असू कत के हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो सलोक जलन बुझी शीतल पय मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हार हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर

ले आए मंत आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्र पवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो सलोक संत सहाय जी के पव जल तारन हार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर शंत चरण विराजत सब उपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते

आई। क्यों तत्त अवगत पावे गुरमुख लगे प्यारो, आपे सुरता आपे करता कहो नानक बिचारो। हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रहे समाई, पूरे गुरते साच कमावे गत में तो सब दे पाई। आद कहो बिस्माद विचार कथिया ले सुन निरंतर वास लिया, अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारिया ले कटकट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी सेवै सिखसो खोज लह। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाण जी जुगत सच जाण सोई, आप मेट निराल मोहवै अंतर साच योगी कहिए सोई। अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचय परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया। एक कहो सच एका जाने हम मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाण अंतर कमल प्रगास थिया। जीवत मरै ता सबके सूजै अंतर जाने सर्वदया, नानक ता को मिलै वडाई आप पछाणै सर्व जिया। साचो

नानक दरगह पावै मान। साच वखरो तन पल्लै होए, आप तरह तारे पी सोए। सहज रत्ता बूझै पत होए, ता की कीमत करै ना कोए। जै देखा तै रया सुमाए, नानक पार परै सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरियै भवजल संसारो। त्रै सत अंगल वाई कहियै, तिस कहो कमन आधारो। बोले खेलै असर होवै, क्यों कर लख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाए। सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं, जै देखा तै सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अगल कला तर सोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नम मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरियै, इत उत एको जाणै। चिन्ह वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। त्रै सत अंगल वाई अवदू, सुन सच आहारो। गुरमुख बोलै तत् बिरोलै, चीनै लख अपारो। त्रै गुण मेटै शब्द वसाए, ता मन चूकै अहंकारो। अंतर बाहर एको जाणै, ता हर नाम लगै प्यारो। सुख मना एड़ा पिंगला बूझै, जा आपे लख लखाए। नानक तहते उपर साचा, सतगुर शब्द समाए। मन का जियो पवन कथियले, पवन कहां रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कमन अवदू, सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस ना आवै अवदू, हम मैं प्यास ना जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। कवन बुद्ध जित असर रहिया, कित भोजन तृप्ता सै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल न ग्रासै। रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जल बलताता। बिंद ना राखिया शब्द ना पाखिया, पवन ना साध्या सच ना आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रहै, तव नानक आत्म राम कौल है। गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता। गुर विचारी अग्नि निवारी, अपियो पियो आत्म सुखतारी। सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक पूजै को विचारी। एहो मन मैंगल कहां बसिया ले, कहां बसै एहो पवना। कहां बसै सो शब्द अवदू, ता को चूकै मन का पवना। नदर करे ता सतगुर मेले, ता निकर वासा एहो मन पाए। आपै आप खाए ता निर्मल होवै, तावत वर्ज रहाए। क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों संस्कार सूर समावै। गुरमुख हम मैं विचों खोवै, तव नानक सही समावै। एहो मन निहचल हिरदै वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहै। नाभ पवन कर आसन बैसै, गुरमुख खोज तत् लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्र पवन ज्योत सो शब्द लहै। खावै दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहै। अनहद बाणी गुरमुख जानी, विरलो को अर्थावै। नानक आखै सच सुपाखै।

अभ्यागते है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रहण आयर मह सब किश है, करमी पल्लै पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चलै तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरसना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवे दसन दास, ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबे न छोड़े पास। ज्यों जल में कमल अलिपतो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै त्यवहार गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजिया नो, पाप पुन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला।

पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदै सब तावै आप नहीं चलिया चल है होर आवै जावै सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पावै निज कर वासा पाई है सच सिफत समावै सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक

सूत पाए करे बुरियाई, नाता तोता थाए न पाई। मुसलमान करे वड्याई, विण गुर पीरै को थाए न पाई। राहो दसाए उथै को जाए, करनी बाजाओ पिस न पाए। जोगी कह कर जुगत दसाई, तित कारण कर मुंद्रा पाई। मुंद्रा पाए फिर संसार, जिथे किथे सृजनहार। जेते जीते ते वाटाऊ, चीरी आई टिल ना काऊ। एथे जाने सो जाय सियाने, होर फकड़ हिंदू मुसलमान। सबना का दर लेखा होए, करनी बाजो तरे ना कोए। सचो सच वखाने कोए, नानक अगे पुछ ना होए। पौड़ी हर का मंदिर आखिया, काया कोटगढ़। अंदर लाल जवेहरी, गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदिर शरीर अत सोहना, हर हर नाम दिड़। मन मुखे आप खोआयन, माया मोह नित कड़। सबना साहब एक है, पूरे भाग पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया। ना सत पानी जंत फिरै, ना सत मुंड मुंडाई केसी। ना सत पड़िया देश फिरै, ना सत रुखी बिरखी पत्थर। आपत शावै दुख सहै, ना सत हस्ती बदे संगल। ना सत गाई काओ चरै, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई। जिसनों देत से आए मिलै, नानक ताको मिलै वडाई। जिस कट पीतर शब्द रवै, सब कट मेरे हों सब ना अंदर। जिसे खुवाई तिस कौन कहै, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे भुलावै कौन। जिसे भुलाई पंध सिर तिसे दिखावै कौन। महला पहला सो गृह जो निग्रह करै, जब तब संयम पीखिया करै। पुन दान का करे शरीर, सो गृह गंगा का नीर। बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम तंत में रेख न रूप। महला पहला सो अवदूती जो तूपै आप, पिखिया पूजन करै संताप। औहठ पटन में पीखिया करै, सो अवदूती शिवपुर चढ़ै। बोले गोरख सत स्वरूप, परम तंत में रेख न रूप। महला पहला सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध उर्ध करे निरंजन वास। चंद सूरज की

अहन से अंतर रहते आन, ते बैरागी सत समान। बोले पार्थर सत स्वरूप, परम तंत में रेख न रूप। महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत, कन पड़ाए क्या खाजे भुगत। आस्त नास्त एको नाओ, कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक मान है सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानकिया खैरे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई। पीड़ी गली फही कूड़ ने खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवरया सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परशुराम रोवे घर आया, अजय सो रोवे पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवे राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया, रोवे दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए, रोवे पांडव पय मजूर। जिनके स्वामी रहत हदूर, रोवे जन्मे जा खोए गया। एकी कारण पापी पया, रोवे शेख मसा एक पीर। अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे राजे कन पड़ाए। कर कर मांगे पीखिया जाए, रोवे किरपन संचय तन जाए। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार। नानक दुखिया।

करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। महला पहला, नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल। मनुआ अंधना चेतई पड़े अचिंता जाल। नानक चेत्या चेत है चिंता बद्दा जाए। नदर करे जे अपनी ता आपे लय मिलाए पौड़ी। से जन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता। गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता। सब किश कर ही माहे है वडभागी लीता। अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता। आपे मेल मिलाया नू आपे दे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। वेल पंजाया कत मुनाया कट कुट कर खुंब चढ़ाया। लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सुई तागा सीवै। इउ पत पाटी सिवती सीपै नानक जीवत जीवै। हुए पुराना कपड़ पाटै सुई तागा गंडै। माहो पख केहो चलै नाही कड़ी मोहत किश हंडै। सच पुराना होवै नाही सीता कदे ना पाटै। नानक साहेब सचो सच्चा तिचर जापी जापै। महला पहला, सच की काती सच सब सार। काड़ तो तिसकी अप्रयापार। सबदे सान रखाई लाए गुण की थे कै विच समाए। तिसदा कुठा होवै सेख लोहू लब निकथा वेख। होए हलाल लगे हक जाए नानक दर्दी दर समाए। महला पहला। कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार। गर्भ ना कीजै नानका मत सिर आवै पार। पौड़ी सो सत संगत शब्द मिलै। जो गुरमुख चलै सच ते आयन से सचे। जनहार खर्च तन पलै। भगत सोहन गुण गावंदे गुरमतिया चलै। रतन विचार मन वसिया गुर कै शब्द भलै। आपे मिल मिलाईंदा आपे दे वड़ियाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा। आसा अंदर सब को कोई निराशा होए। नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए। महला तीजा। ना किश आसा हथ है क्यों निराशा होए। क्या करे ए बपड़ी जा पुलाए सोए। पौड़ी त्रिग जीवन संसार। सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दातार। नि चले हो तन सास सास आराधे निर्मल सोए जानो। अंतर जामी अगम रसना एक पान। रव रहया सरबत नानक बल जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै एवै पाणा। सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। बगला काग न रही सरवर जे होवै अत सियाणा। ओना रिजक न पयो उथै ओना होरो खाणा। सच कमाणै सचो पाईऐ कूड़ै कूड़ा माणा। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पै परवाणा। महला पहला। साहिब मेरा उजला जे को चित करे। नानक सोई सेवियै सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवियै जित सेवै दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवै मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लाइयन। आपे ही उपदेशदा गुरमुख पति आईयन। एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन। जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाए लाइयन। नानक नाम ती आई है।

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परे प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहेब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हौ तिस सेवी हौ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सदही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरे मेलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोई ना किसी वस सबना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हौ तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनों बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे ना। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहारे जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै हौ सदब

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सुनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनो तेरी मया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जब

मा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाओ आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए हस्त बिनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छड़ी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले कहत नाम दे उसनो तलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बारक राखी अले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मैं अनहद वेद मजाओ गो बैरागी रामे गावो गो सबदा तीता नह दराता या कुल कह कर जाओ गो रहाओ एड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो तीर्थ देखना जल मैं पैसो जी जंत ना सतावो गो आठ साठ तीर्थ गुरु दिखाए कठी पीतर नाओ गो पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो ना कहावो गो नामा कह चित हर स्यों राता सुन समाध

माए ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जाओ गोदावर जाइए, कुंभ जाओ केदार नाइए, गोमती सहस गऊ दान की जय। कोट जाओ तीर्थ करै, तन जाओ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सरतऊ न पूजै। मने न की जय रोस, जमे ना दी जय दोस, निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जथ रथ राय नंद, राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत्रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए।

काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते एह बुद्ध कबै ना नासी कहो रविदास समय सबै नहीं समझस भूल परे जैसे बौरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद एड़ा पिंगलाए और सुख मना तीन बसाए कठाई बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है गुरगम चीने बिरला कोए तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी तह बाजे सबदा नाहद बाणी तह चांदना सूरज पौन ना पानी साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुरमत शीजै अमृत रस गगन अंतर पीजै एस कला जो जाने पे ओ पेटै तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती जागत रह सो कवो ना सोवै तीन तलोक समाद पलोवै बीज मंत्र लै हृदय रह मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह ना अलिया पाख पांचों इंद्री बस कर रख गुर की साखी राख चीत मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत कर पल्लव साखा बिचारे अपना जन्म ना जुए हारे। असर नदी का बंद है मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जर है सो निजर चर जगन्नाथ्यो गोष्ट करे चौ मुख दीवा जो द्वार पलुवंत मूल बिचकार सर्व कलाले आपे रह मन मान करत नाम है गुह मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे निरंजन त्रिपवन धनी पंचे शब्द निर्मायल बाजे टुलके चवर संख कान गाजे दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान बेणी जाचे तेरा नाम। राग नट नारायण।

आग्या मान जान सुख पाया, सुन सुन नाम तुहारो जियो। इहां उहां हर तुम ही ओ गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाइए बाता तब कुशल खेम सब थियो। सा संग नानक परगासियो आन नाही रे बियो। नट महला पंजवा जा को पई तुम्हारी तीर। जम की त्रास मिटी सुख पाया, निकसी हो मैं पीर रहाओ। तप्त बुजानी अमृत बानी, तृप्ते ज्यो बारक खीर। मात पिता साजन संत मेरा, संत सहाई वीर। खुले प्रम पीत मिले गोपाला, हीरे बेदे हीर। बिस्म पए नानक जस गावत, ठाकर गुनी गहीर। नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो। आठ पहर जन कै संग बसियो, मनते नहीं बिसारियो रहाओ। बरन चेहन नाही किछ पेखियो, दास का कुल ना बिचारियो। कर कृपा नाम हर दियो, सह सुभाय सुवारियो। महाबिखम अगन का सागर, तिस्ते पार उतारियो। पेख पेख नानक बिकसानो, पुनः पुनः बलिहारियो। नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो। कोट प्राद मिटैखिन पीतर, ताका दुख ना रहियो रहाओ। खोजत खोजत भयो बैरागी, साधु संग लहयो। सगल त्याग एक लिव लागी, हर हर चरण गहयो। कहत मुक्त सुनते निस्तारे, जो जो शरण पयो। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक अंद भयो। नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी रहाओ। अंचला गहायो जने अपने को, मन भी दो प्रेम की खोरी। जस गावत भगत रस उपजियो, माया की जाली तोरी। पूर्ण पूर रहे कृपा ने दो, आन ना पेखो होरी। नानक मेल लियो दास।

आठ पहर गुण गायण रहाओ, साधु तूर करो नित मज्जन, सब किल विख पाप गवायण, पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायण। जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल ना लायण, दोए कर जोड़ नानक दान मांगै, तेरे दासन दा दसायण। नट महला पंजवा, मेरा सर्वस नाम निधान, कर कृपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान रहाओ। सुखदाता दुख पंजन हारा, गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने, बिनस्यो मूड अभमान। क्या गुण तेरे आख वखाना, प्रभयंत्र जामी जान, चरण कमल सरन सुख सागर, नानक सद कुर्बान। नट महला पंजवा, हाँ वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ, मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते, दीना ना दयाल, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, नानक दर्शन हाल, नट पड़ताल महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे नीत, बिनसै दुख विपरीत, सब अर्पो मंतन जीत रहाओ। कोई विरला अपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर पाजो जन्म पदार्थ जीत। कोट पतत होहे पुनीत, नानक दास बल बल कीत, नट अष्टपदिया महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। राम मेरे मंतन नाम आधारे, खिन पल रह न सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल भय प्रभ ठाकर, गुर के शब्द सवारे। मधसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आगै, मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो, प्रभ एको पुरख निरारे, सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर, प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उरतारे, हर हर कथा बनियत मीठी, ज्यो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, अत फीके लोभ बेकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया, सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे, मेरे ठाकुर के जन प्यारे, सास सास सास है जेते, मैं गुरमत नाम समारे। सास सास जाए ना मैं बिन, सो बिरथा सास विकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी, मोको हरजन मिल प्यारे, नानक दासन दास कहत है, हम दासन के पनिहारे।

आओ सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा मैला गर्म लगारे ना मैं सुरत वजी है दय दसो हर मुस्की मुसक गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनीके बचन समारे गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निस्तारे बबेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिया संको तारे सतगुर मिलिया परम पद पाया हों सतगुर कै बलिहारे पाखंड पाखंड कर कर भरमे लोभ पाखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवै जमकाल खड़ा सिर मारे उगवै दिन सियाल जल संभालै बिख माया के बिस्थारे आई रहन पया सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे कलर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारे साग तनार सब पुख पुखाने दर ठांडे जम जंदारे मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी उतरे शब्द विचारे जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंतर उपाए नक खीनी सब नथ हारे नानक प्रभ खिंचे तिव चलिए ज्यो भावे राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नावारे सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको मिल कर मल पाप उतारे रहाओ संगत का गुण बहुत अधकाई पढ़ सुवा गन को धारे परसन परस पय कुबजा कहो लै बैकुंठ सिधारे अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बोलारे मेरे ठाकर कै मन पाए भावनी जम कंकर मार बेदारे मानुख कथै कथ लोक सुनावै जो बोलै सो ना बिचारे सतसंगत मिलै ता दृढ़ता आवै हर राम नाम निस्तारे जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किछ ना सुमारे जब कर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डै पनिहारे सागर स्योमन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे साकत बचन बिशुआ ज्यों डसी है तज साकत परे परारे लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकर बहुत प्यारे पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लालन लाल गुलारे जैसा रंग देह सो होवै क्या नानक जंत विचारे नट महला चौथा राम गुर सरन प्रभु रखवारे ज्यो कुंचर तंदुऐ पकड़ चलायो कर उपर कड निस्तारे रहाओ प्रभ के सेवक बहुत अत नीके मन सरदा कर हर तारे मेरे प्रभ सरदा भगत मन भावै जन की पै सवारे हर हर सेवक सेवा लागै सब देखै ब्रह्म पसारे एक पुरख एक नदरी आवै सब एका नदर निहारे हर प्रभ ठाकर रव्या सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवै विच पाथर कीरे कारे अंतरवास बहुत मुस्काई प्रमपूला मिर्ग सिंघारे बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी गुरपूरे कर निस्तारे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे ज्यों जन चंद्रहांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जनो हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन, एक इंद्री पगर संघारे, पंचभूत सबल है देही, गुर सदगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उनवे कहन कन हारे। साकत गौ अमृत भव सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, शेड़ शेड़ कड्डै विख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत संत मिलै मन बिकसै, ज्यो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कह दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग ले मारे। राख राख राख प्र मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाद बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर सन हर प्रभ आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मर निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म

मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलो गुरपुर, गुरबचन बिकानो हट हाट, मकर प्राग दान बहु किया, शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम के बिन हर नाम को मुक्त ना पावे, बहु कंचन दीजे कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पौ पागा, लच लज पानी मटकी माट, काल युग गुरपुरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे ललाट, जन नानक रस अमृत पिया, सब लाथी भूख तिखाट, शक्का एक माली गौड़ा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हरे मन टहलो हर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार, रहाओ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पवजल तारिया हर संत पुरख अपार, नित चरण सेवो साध के तज लो मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार, एक परम पूले सागता, बिन गुर अंध अंधार, तुर होव ना सो होया को न मेटनहार, अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार, माली गौड़ा महला पंजवा, राम नाम कौ नमस्कार, जास जपत होवते उदार, रहाओ जा कै सिमरन मिटै तंद, जा कै सिमरन छूटै बंद, जा कै सिमरन मूर्ख चतर, जा कै सिमरन कुलै उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचित पाप, जा कै सिमरन नहीं संताप, जा कै सिमरन रिद विगास, जा कै सिमरन कवलादास, जा कै सिमरन निद निधान, जा कै सिमरन तरे निदान, पतत पावन नाम हरी, कोट भगत उधार करी, हर दास दासा दीन सरन, नानक माथा संत चरण, माली गौड़ा महला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूर्ण काम, रहाओ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुख खीर, जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरखे बरस मेंग, जैसे पलन सरन सेंग, गरड़ मुख नहीं सर्प त्रास।

गुरमंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन ना पाए। हरे नार इन बिद पार पराए, त्याय हर जी होए मृतक त्याग दूजा पाओ। रहाओ दूजा मारू महला पंजवा, बाहर टूंडन ते छूट परे गुर कर ही माए दिखाया था। अनपव अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ना कथू जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था, मोलिया मोल ना पाया जाई कर कृपा गुरु देवाया था। रहाओ आदिष्टा गोचर पार ब्रह्म, मेरा साधु कथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वजयो, तह अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मंत्रशना बूझी, अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुरसेवे, अगड़ घड़ियो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खे लाया था। कहो नानक परम गुर खोया, ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा, जिसे साज निवाजया तिसे स्यो रुच नाहे। आन रुती आन बोई है, फल ना फूलैता है। हरे मन वत्र बीजन नाओ, बोए खेती लाए मनुआ, पलो समो सुवाओ। रहाओ खोए खेड़ा परम मन का, सदगुर सरनी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया, सोई कार कमाए। पाओ लागा गोबिंद स्यों, काल पाई थाए। खेत मेरे जमया, निखुट न कबहू जाए। पाया अमोल पदार्थो, छोड़ न कतहू जाए। कहो नानक सुख पाया, तृप्त रहे आगाए। मारू महला पंजवा, फूटो अंडा परम का, मने पयो परगास। काटी बेरी पगहते, गुर कीनी बंद खलास। आवन जान रहे हो, तप्त कड़ा हा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। रहाओ जब ते साधु संग पया, तो छोड़ गए निगहार। जिसकी अटक तिस्ते छुट्टी, तो कहां करे कोटवार। चूका पारा कर्म का, होए ने कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर की ने तरमा। सच थान सच बैठका, सच स्वाओ बनाया। सच पूंजी सच वखरो, नानक कर पाया। मारू महला पंजवा, बेद पुकारे मुख ते पंडित, का ममन का माठा। मोनी होए बैठा एकांति, हृदय कल्पन गाठा। होए उदासी गृह उता चलियो, छुटके नाही नाठा। जी की कह पै बात कहा, आप मुक्त मौको प्रमेले, ऐसो कहा लहा। रहाओ तपसी करके देही सादी, मनुआ दे दस्ताना। ब्रह्मचार ब्रह्म चज कीना, हृदय पया गुमाना। सन्यासी होए कै तीर्थ प्रम्यो, उसमें क्रोध बिगाना। कुंगर बांध पए रामदासा, रोटियन के उपावा। बर्त नेम कर्म खटकीने, बाहर पेख दिखावा। गीत नाद मुख राग आलापे, मन हर हर गावा। हर सोग लो मोह रहत है, निर्मल हर के संता। तिन की तूड़ पाए मन मेरा, जा दया करे भगवंता। कहो नानक गुर पूरा मिलिया, ता उतरी मन की चिंता। मेरा अंतर जामी हर राया, सबके जाने मेरे जी का प्रीतम। बिसर गए बकबाया। रहाओ दूजा मारू महला पंजवा, कोट लाख सर्ब को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा। जा को नाम ना दिया मेरे सतगुर, से मर्जन मैं गावारा। मेरे सतगुर ही पत राख, चीत आवे तब ही पत पूरी।

या दिन सो सब राती वन त्रैणो त्र भवन पानी चार बेद चारे खानी खंड दीप सब लोवा एक वावै ते सब होवा करण हारा बूजो रे सदगुर मिले तासु जैरे रहाओ त्रै गुण किया पसारा नरक सुरग अवतारा हम मैं आवै जाई मन टिकन ना पावै राई।

मोहन लाल मेरा प्रीत मन प्राणा मोको देहो दाना रहाओ। सगले मैं देखे जोई बीजो अवर ना कोई जियन प्रतपाल समाहे है हुसी आहे। दया मोहे की जय देवा नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा। पातत उदाहरण तारण बल बल बले बल जाइए ऐसा कोई पेटे संत जित हर हरे हर त्याइए। मोको कोई ना जानत कहियत दास तुम्हारा एहा ओटा धारा रहाओ। सर्ब धारण प्रतपारण एक बिनो दीना तुमरी बिद तुम ही जानो तुम जल हमीना। पूर्ण बिस्थिरन स्वामी आहे आयो पाछे सगलो पूमंडल खंडल। प्रभ तुम ही अच्छे अटाला खयो देवा मोहन अलख अपारा। दान पावो संता संग नानक रेण दा सारा। मारू महला पंजवा त्रिपत गाए संता गुर जाने जनमंता ता की किश कहण ना जाई जा को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगया तो ला नामो रहाओ अवगत स्यों मान्या मान।

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्यागुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखान हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत ए है। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल दीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसै प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदपो हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राख लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राख बूद बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जिंतु किया प्रभ करण करने एक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन नानक।

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमाया जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखै पड़हारे ऊर्द मुख महा गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई भैनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कहो सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसै गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यान स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई जो संपत अपनी कर मानी छन मैं पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लागो रहाओ जम को डंड परयो सिर ऊपर तब शुभ तै जागो कहां हो तो अब कै पछताए छूट तो नाहन भागो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनरागो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

ना जाना सियाना सदा साहेब कह रंगे राता अंधन नाम वखाना। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ।

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहली है जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त न होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बुझे ओ बालक वांगी पाली है छोड़ बह तो छूटे नाही जो सिंचे तो पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राख है तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागे तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुरमत जाली है जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औध विहानिया पाप करेंदर सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े जो कहानियां खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जमे बहुत सजाए पया देस लम्मे जिन कीता तिसे न जानी अंदा तां दुख सहे प्राणिया खालक थावो पुला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संतन मिलियो वत्ते अपन पानिया मौला खेल करे सब आपे एक अड्डे कलैर वे आपे ज्यो नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहानिया मेहर करे ता खसम ते आई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक कहो गुण गीता नित वखाणिया मारू सोल हे महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद साचा सच सोई अवर ना कोई जिन सिर जीत नहीं फुन गोई ज्यो पावे त्यों राखो रहना तुम स्यों क्या मुकराई है आप यो पाए।

आपे पौण पाणी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है नासा कै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिन सो आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किसी ही कस बख्शे आपे दे लै पाई है, आपे तन खो आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खानी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल विकाल पए देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त त्रिप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच।

साजे गुण प्रगासं जति सति संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख कोई न मिटे साचे लिख है। आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाल है पार कर जो है कर नहीं पाल है। काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझे त्रिपवन सूझे मनसा मार मन स्यों लूझे। जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपो बाल सिखाई है। आपे सुरग मच पयाला आपे जो सुरूपी बाला जटा बिकट बिकराल सुरूपी रूप ना रेख्या काई है। बेदक तेबी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल्यो पाए समाए अलखना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे कोय ना काटे अवगुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर पाए मिले पौ जाई है। भूले चूके मार्ग पावे आप भुलाए तू है समझावे।

द्वारा गंगा सागर बेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अदली प्रव आपे परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अभुल ना कबहू भुला आपे मेहर दया परदाता ना किसै को बैराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई सब सह दाता तिल ना तुमाई भरपुर धार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमया पार साचे सृजन हार मुरार जिसनों नदर करे तिस मेले मेल मिलै मेलाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है उबे सेवै लख अपार होर केती दर दिसै बिल लांदी मैं गणत ना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी होर ना दिसै वेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कह बेनंती दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला दूजी दुरमत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली घर वार सहज ना जाने शोहर बिन पर नींद ना पाई है। अंतर अग्न जलै पड़क हारे मनमुख तके कुंडा चारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संघारे ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै मनसा मनै समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा मूर्त सूरत कर पारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देख दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल बिगास हरे सर सुबर आत्म राम सखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना परथाए सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिलै वडाई है। आपो पाया जगत सवाया जिन सिर आत तंदै लाया सच्चे ऊपर अवरना दिसै साचे कीमत पाई है। ऐथे गोयलड़ा दिन चारे खेल तमाशा तंदूकारे बाजी खेल गए बाजी गर जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वड्याई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिलै सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीय सह साजी है क्यों सुख पावै दूवै तीय निर्मल एक निरंजन दाता गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट कही सुख पाया मंत्र मैल ना काई है। जीव रसायन साचै राती हर प्रभ संगी पौ ना प्राती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना जत कत देखो तेरी सरना दुख सुख देहे तू है मन पावै तुझ ही स्यो बने आई है। अंत काल को बेली नाही गुरमुख जाता तू सालाही नानक नाम रते बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला आज उगादी अपरे अपार है आद निरंजन खसम हमार है साचे जो जुगत विचारी साचे ताड़ी लाई है। केतड़े आ जुग तंदूकार है ताड़ी लाई सृजनहार है। सच नाम सची वड्याई साचे तख्त वडाई है। सत जुग सत संतोख सरीरा सत सत वरत गहर गंभीरा सच्चा साहेब सच परख है साचा हुक्म चलाई है। सत संतोखी सतगुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगह साच निवासा मान हुक्म रजाई है।
ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਸਾਚ ਪਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ, ਤੀਨ ਚਰਨ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਸੁੱਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਬਚੈ ਅਵਾਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਦਰਗੈ ਸੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਦੀਜੈ। ਬਾਂਧੇ ਆਵੈ ਬਾਂਧੇ ਜਾਵੈ, ਸੋਜੀ ਬੂਝਣਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ। ਦੋਏ ਪੱਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਅਹਿਨਿਸ ਭਗਤ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਜਿਉ ਤੁਦ ਪਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ। ਹੱਠ ਨਿਗਰੈ ਅਪਤੀਜ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਿਰੰਦਾ, ਨਾ ਜਮ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੈ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਾ ਸੰਖ ਉਧਾਰੇ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਮੈਲ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਜਾਚੈ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਸਾਚਰ ਜਾਈ।

तत् लहै अंतर्गत जाणै सतसंगत साच वडाई है। आप तरै जन पितरा तारे संगत मुखसो पार उतारे। नानक तिसका लाला गोला जिन गुरमुख हर लिवलाई है। मारू महला पहला केते जुगवर ते गोबार है। ताड़ी लाई अप्रयापार है तुंदुकार निरालुम बैठा ना तद तंद पसारा है। जुग शक्ति तिन्नै वरताए जुत सपाणा तवै चलाए। जिसै शरीक न दिसै कोई आपे अप्रयापारा है। गुप्ते बुझो जुग चतवारे घट घट वरतै उधर मझारे। जुग जुग एका एकी वरतै कोई बुझे गुर विचारा है। बिंद रगत मिल पिंड सरिया पौन पानी अग्नि मिल जिया। आपे चोज करे रंग महली होर माया मोह पसारा है। गर्भ कुंडल मैं उर्द ध्यानी आपे जाने अंतर जामी। सास सास सचनाम संभाले अंतर उधर मझारा है। चार पदार्थ लै जग आया शिव शक्ति कर वासा पाया। एक विसारे ता पिड़हारे अंधले नाम विसारा है। बालक मरे बालक की लीला कह कह रोवे बाल रंगीला। जिसका सा सोत नहीं लिया पूला रोवन हारा है। पर जोबन मर जाहे के की जय मेरा मेरा कर रोवी जय। माया कारण रोए विगुचै त्रिग जीवन संसार आहे। काली हूं फुन तो ले आए विन्ना में गत गया गवाए। दुर्मत अंधला बिनस बिनासै मूठे रोए पुकार आहे। आप विचार न रोवे कोई सतगुर मिलैता सोजी होई। बिन गुर बजर कपाट ना खुले शब्द मिलै निस्तार आहे। बिरद भया तन शीजै देही राम ना जपई अंत स्नेही। नाम विसार चलै मोहे कालै दरगह झूठ खुवारा है। नाम विसार चलै कूड़ियारो आवत जात पड़े सिरशारो। साहुर लै कर वास ना पाए पेयड़ै सिर मारा है। खाजै पैजै रली करीजै बिनया भगती बाद मरीजै। सर अवसर की सार न जाणै जम मारे क्या चारा है। पर विरति नरविरत पछाणै गुर कै संग शब्द कर जाणै। किसी मंदा आख न चलै सच खरा सचियारा है। साच बिना दर्श जै ना कोई साच शब्द पैजै पत होई। आपे बख्श लै तिस पावै हमें गर्भ निवारा है। गुर कृपा ते हुक्म पछाणै जुगै जुगंतर की बिद जाणै। नानक नाम जपो तर तारी सच तारे तारण हारा है। मारू महला पहला हर सा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई। सर्व जिया प्रतपाल समाले सोवंतर दाना बीना है। गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर मैं रतन लाल बहु सारे। मोती माणक हीरा हर जस गावत मन तन पीना है। हर अगम अगाहो अगाध निराला हरियंत न पाइय गुर गोपाला। सतगुर मत तारे तार नहारा मेले रंगलीना है। सतगुर बाजो मुक्त कनेही ओ आज जुगादी राम स्नेही। दरगह मुक्त करे कर कृपा बख्शे अवगुण कीना है। सतगुर दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रस पाए। जम जा गात नाही कर लाज कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीना है। काया हंस प्रीत बहुतारी ओ जोगी पुरख ओ सुंदर नारी। अहनिस भोगे चोज बिनोदी उठ चलते मता ना कीना है। सृष्टि उपाय रहे प्रभ शाजै पौन पानी बह संतर गाजै। मनुआ डोले दूत संगत मिल सो पाए जोग शकीना है। नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म पया चलना क्यों रही है। नरक कूप मैं गोते खावे जो जलते बाहर मीना है। चौरासी नरक सख्त भोगाई है जैसा कीचै तैसो पाई है। सतगुर बाजू

मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही। गुर की सेवा मुक्त परायण, अंधन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो, जो इच्छो सोई फल पावो। साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो। गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिभवन सेवक वडो वडेरे। सब तेरी कुदरत तू सिर सरदाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, ओए दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए। हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत नकाई। हाँ मैं मार करो गुरसेवा, जन नानक।

कमावै। अंदले सोजी बूझना काई, लोभ बुरा अहंकारा है। पेर बिन क्या तिस धन सिंगारा, पर पर राती खसम सारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा है। प्रेत पिंजर में दुख कनेरे, नरक पचे अज्ञान अंधेरे। धर्म राय की बाकी लीजै, जिन हर का नाम विसारा है। सूरज तपै अग्न बिखचाला, आपत पशु मन मुख बेताला। आसा मनसा कूड़ कमावै, रोग बुरा बुरियारा है। मस्तक भार कलर सिर पारा, क्यों कर भव जल लंगस पारा। सतगुर बोथे आज जुगादी, राम नाम निस्तारा है। पुत्र कलत्र जग हित प्यारा, माया मोह पसरिया पासारा। जम के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत् बिचारा है। कूड़ मुठी चाले बौराही, मनमुख दाजे पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना, नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा सच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए न गड्डी मूले, जे सतगुर रखन हारा है। खेहू खेहे रलै तन छीजै, मनमुख पाथर सैल न पीजै। करण पलाव करे बहुतेरे, नरक सुरग अवतारा है। माया बिख पोए अंग मनाले, इन दुबदा कर बहुते गाले। सतगुर बाजो प्रीत न उपजै, भगत रते पतियारा है। साकत माया कौ बहुतावै, नाम विसार कहां सुख पावै। त्रिह गुण अंतर खपै खपावै, ना ही पार उतारा है। कूकर सूकर कहिए कूड़े आरा, पौ कुमरै पौ पौ पौहारा। मंतन झूठे कूड़ कमावै, दुर्मत दर गहारा है। सतगुर मिले ता मनुआ टेक, राम नाम दे सरण परेक। हर तन नाम अमोलक देवै, हर जस दर गै प्यारा है। राम नाम साधु सरनाई, सतगुर बचनी गत मित पाई। नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मेल नहारा है। मारू महला पहला, कर रहो रे मन मुगद आने। राम जपो अंतर गा ध्याने, लालच छोड़ चो अपरंपर, इं पावो मुग द्वारा है। जिस बिसरिया जम जोहन लाग, सब सब सुख जाहे दुखा फुनिया गै। राम नाम जप गुरमुख जी अड़े, एहो परम तत् विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। अहनिस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संयम सारा है। राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में एहो रस टोलो। गुरमत खोज लहो घर अपना, बहुना गर्व मजारा है। सच तीर्थ नावो हर गुण गावो, तत् विचारो हर लिव लावो। अंत काल जम जोहे ना साकै, हर बोलो राम प्यारा है। सतगुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाणा। जिसको सतगुर वेल मिलाए, ते चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, तिस मैं राम रतन लै चीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाइया शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर सरनाई। आत्म चीन प्रात्म चीनो, गुर संगत ओ निस्तारा है। साकत कूड़ कपट मैं टेका, अहनस निंदा करै अनेका। बिन सिमरन आवै फुन जावै, गर्भ जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान ना चूकै, जम का डंड ना कब हूं मूकै। बाकी धर्म राय की लीजै, सिर अफरियो पारिया फारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हम मैं करता पवजल परिया। बिन गुर पार ना पावै कोई, हर जपिए पार उतारा है। गुर की दात ना मिटै कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨੇਣ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅਪਰਿਆ ਪਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਪੂਲੇ ਆਵੋ ਜਾਵੋ, ਜਨਮ ਮਰੋ ਫਨ ਪਾਪ ਕਮਾਵੋ, ਸਾਗਤ ਮੂੜਾ ਚੇਤਨਾ ਚੇਤੈ, ਦੁਖ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿੰਦਾ ਤੈ ਦੀਏ, ਕਿਸ ਕੋ ਦੋਸ ਦੇਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਕਿਆ ਲੈ ਚਾਲੇ, ਬਿਖਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰ ਬੇਕਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਅਕਥ ਕਥੋ ਮਨ ਮਨੈ ਸਮਾਈ, ਉਠ ਚਲਤਾ ਠਾਕ ਰੱਖੋ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਦੋ ਕਾਟੇ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਓਟ ਪਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲਿਵ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਤਿ ਉਤਮ, ਹਰ ਬਖਸੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਮਾਰੀ।

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा है। संयोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख सिर सनाहा है। नीके साचे केवा पारी, ससौ दल गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चा ओ महा है। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा है। सबको बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्म

आपे बख्श लहै सुख पाए, सद ही नाम निवासी है। एहो तम धरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वणज व्यापारा। सच धन जमया तोट ना आवै, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय, आपे बख्श लहै नाम दी जय। गुरमुख होवै सो पत पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई, गुर प्रसादी बूझै कोई। गुरमुख होवै सो तन पाए, सधी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई, माया मोहे सो दना काई। मनमुख अंधे किशु ना सूझै, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हों मैं माया सूते, अपना कर ना संभालै अंत विगूते। पर निंदा करै बो चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल, नामे नाम सवारी है। मारू महला तीजा, एको सेवी सदा थिर साचा। दूजे लागा सब जग काचा, गुरमती सदा सच सालाही। साचे ही सच पति जय है। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता, आपे लाए लाए जग जीवन दाता। आपे बख्शे दे वड़े आई,

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड़ियाई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, ज्योत पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतन आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब सरन तुम्हारी, कर कृपा आप पिछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जमे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, ज्योत पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पिछाता है, पाप पुन वरत संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पिछाता है, कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पिछाता है, माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे, मन मुख भरम भुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एको दा

मनमुख पूला ठौर ना पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए। बिख्या राते बिख्या खोजै, मर जन्म दुख ताहा है। आपे आप सा लाहे, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे। तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे लखा थाहा है। बिन गुरदाते कोई ना पाए, लख कोटी जे कर्म कमाए। गुर कृपा ते कट अंतर वसिया, सबदे सच सलाहा है। सेजन मिले तुरे आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए। नानक जन गुण गावै नित साचे, गुण गावै गुणी समाहा है। मारू महला तीजा, निश्चल एक सदा सच सोई। पूरे गुरते सोजी होई, हर रस पीने सदा ते आयन। गुरमत सील सन्नाहा है, अंदर रंग सदा सचियारा। गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौनिद नाम वसिया कट अंतर। छोड़िया माया का लाहा है, रैयत राजे दुरमत दोई। बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक ते आए न सदा सुख पाए न। निश्चल राज तनाहा है, आवन जाना रखे ना कोई। जमन मरण तिसै ते होई, गुरमुख साचा सदा ते आवो। गत मुक्त तिसै ते पाहा है, सच संयम सतगुरु द्वार है। हम मैं क्रोध शब्द निवार है, सतगुर सेव सदा सुख पाई है। सीर संतोख सब ताहा है, हम मैं मोह उपजै संसारा। सब जग बिनसै नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए। नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर शब्द सुहाया। पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कार्ज सच नाम सुहेला। बिन शब्द कार्ज केहा है, खिन मैं हसै खिन मैं रोवै। दूजी दुरमत कार्ज ना होवै, संयोग वियोग करतै लिख पाए। कीर्तना चलै चलाहा है, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए। हर स्यों सदी रह समाए, गुर कृपा ते मिलै वडियाई। हम मैं रोग ना ताहा है, रस कस खाए पिंड वधाए। पेख करै गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी। बिष्टा महे समाहा है, वेद पढ़ै पढ़वाद बखाणै। घट मैं ब्रह्म ते शब्द ना पछाणै। गुरमुख होवै सो तत् बिलोवै, रसना हर रसताहा है। घर वथ छोड़ै बाहर तावै, मन मुख अंधे साधना पावै। अनरस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल।

जो तिल कहानी पीड़ाएं दा पूरे भाग गुरसेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल तसने न आवे महल सच्चे सुख पाएंदा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे भाग गुरसेवा लाए तेरे हथ है सब वड़ियाई जिस देवे सो पाएंदा अंदर प्रगास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रतन सदा कर चानन अज्ञान देर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डूमुए अपागे चलदिया घरदार नजर ना आवे जमदर बांधा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई ज्ञानी त्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वड्याई दर सच्चे सोभा पाएंदा सतगुर नो सेवे तिस्या मिलाए ममता काट सच लिवलाए सदा सच वण जैवा पारी नामो लाहा पाएंदा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसे मन अंतर नामो नाम ते आएंदा। मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाने विच को विरलाया पाणा मन्ने सो सुख पाए पाने विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावै सहजे ही सुख सच समावै पाणे नो लोचे बहु तेरी अपना पाणा या मनाएंदा तेरा पाणा मन्ने सो मिले तुद आए जिस पाणा पावै सो तुझे समाए पाणे विच वड्डी वड्याई पाणा किसै कराएंदा जात सपावै तां गुरु मिलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए तुद अपने पाणे सब सृष्टियो पाई जिसनो पाणा देहे तिस पाएंदा मनमुख अंध करे चतराई पाणा ना मन्ने बहुत दुख पाई पर में पूला आवा जाए कर महल न कबहू पाएंदा सतगुर मेले दे वड्याई सतगुर की सेवा तुर फरमाई सतगुर सेवे ता नाम पाए नामे ही सुख पाएंदा सब नामो उपजे नामो चीजे गुर कृपा ते मन तन पीजे रसना नाम ते आए रस पीजे रस ही ते रस पाएंदा महले अंदर महल को पाए गुर कै शब्द सच चित लाए जिसनो सच दे सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएंदा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सबरो कमाया बिन नाम है मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएंदा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा सुख पाया निज कर वासा पाएंदा सब को वणज करे वापारा विण नाम है सब टोटा संसारा नांगो आया नांगो जासी विण नाम है दुख पाएंदा जिसनो नाम दे सो पाए गुर कै शब्द हर मन वसाए गुर कृपा ते नाम वसया कट अंतर नामो नाम ते आएंदा नामे नो लोचे जेती सब आई नाओ तिना मिले तुर पुरब कमाई जिनी नाओ पाया से वडभागी गुर कै शब्द मिलाएंदा काया कोट आत्या पारा तिस विच बह प्रभ करे विचारा सच्चा न्याओ सचो वापारा निश्चल वासा पाएंदा अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विर लैक ने थान पाया इत साथ निभै सा लाहे सच्चे हर सच्चा मन वसाएंदा मेरे करतैक बणत बनाई इस देही विच सब वथ पाई नानक नाम जय रंगराते गुरमुख को नाम पाएंदा मारू महला तीजा काया कंचन शब्द विचारा तिथे हर वसै जिसदा अंत ना पारा वारा अंदर हर सेवो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मिलाएंदा हर चेतै तिन बलहारै जाओ गुर कै शब्द तिन मेल मिलाओ।
ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਲਾਈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦਾ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਐ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜੇ ਅੰਤਰ ਭਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਮਿਲਾਏ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਅੰਧ ਅੰਧੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਆਏ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੱਗ ਖਿਸਿਆ ਪਛਤਾਏ ਦਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰਾ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸੈ ਸਚਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵੇਖੈ ਸਭ ਥਾਈ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਏ ਦਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਗਣਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਹਰ ਜੀਉ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ ਉਰਧਾਰੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੇ, ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ। ਸੋ ਚੇਤੇ ਜਿਸ ਆਪ ਚੇਤਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਥ ਪਾਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ।

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है, निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है, हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है, तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है, मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र में बाधी, सो प्रभ राखे पाई है, जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन मैं थापो थापनहारा, सोई तेरा सहाई है, मात गर्व मैं जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है, सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किश कीमत कही न जाई है, सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंद पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है, प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है, गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है, मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है, हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है, हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है, खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाहो अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जंत सहत आई है, बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुनो, साची कार कमाई है, मन पर तीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईश, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन दाता, सिमर सिमर जीवै जन तेरे, एक अंकार समाई है, भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है, मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पै एकत्रा, करते भोग बिलासा है, जो पिर करै सो तन तत् मानै, पिर तनै सिंगार रखै संगानै, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तनै दिलासा है, धन मांगै प्रयो बोबे तावै, जो पावै सो आन दिखावै, एक वस्त को पहुँच न साकै, तन रहती भूख प्यासा है, तन करै बिनो दो कर जोरै, प्रे परदेश न जाहो वसो कर मोरै, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरै भूख प्यासा है,
सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पही कृपा नानक सतसंगे, तव धन पिर आनंद उलासा है, तन अंधी पिर चपरसियाना, पंच तत् कार रचन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है, तन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेख, वचन देहे छोड़ ना जासा है, फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा, जिचर रख है तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता उड़ सिदासा है, जाओ प्रे बचन कह तन साचे, तन कछु न समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने करहासा है, आई आ गया पिरो बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, पूर सिदायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है, हरे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पचमुए साकत, निगुरे गल जमफासा है, मन मुख आवै मन मुख जावै, मन मुख फिर चोटा खावै, जितने नरक से मन मुख भोगै, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, तिस कौन मिटावै जे प्रभ पैराया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा है, हाँ बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछड़ना कत ही जासा है, गुण निदान किशकी में ना पाई, कट कट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख पंजन, हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करै आनंद आनंदी मेरा, कटकट पूर्ण सिर सिरै नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहेब, अवर नाही को दूजा है, हरखवंत अनंत दयाला, प्रगट रहे ओ प्रभ सरब्यो जाला, रूप करे कर वेखै विकसै, आपे ही आप पूजा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन पीजा है, साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच धारियो सब साचा, सच्चे सच वर्ती जाहे, सचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सुख की जाहे, एको आप तू है वड राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बाहर सबके जाने, आपे ही आप तीजा है, तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरा, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवे, देह दान सब सह जंत लोवे, टूट ना आवे पूर भंडार, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचै सिद्ध साधक बनवासी, जाचै जति सती सुखवासी, एकदा तार सगल है जाचक, देह दान सृष्टि जाहे, करै भगत हर रंग अपारा, खिन मैं थापो थापन हारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्स सोई तुद जाणै, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माणै, चतर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवै सो वे प्रवाह, जिस चीत आवै सो साचा सहा,
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵੇ ਤਿਸ ਪਾਉ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਡਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਅਮਿਓ ਚੋਲ ਚੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰਦੂਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵਨੀਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨ ਭੀ ਜਾਹੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਲਹੇ, ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬਿਗਨਾ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਪੁਰ ਰਹਿਆ ਗੋਸਾਈ। ਊਚ ਊਨ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਪੂਰੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਇ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਪੀ ਤੇਈ ਸਭ ਨਿਸਤਰੇ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਚਲਥਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਜਾਚੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏਂਦਾ। ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਸੋ ਕਾ ਨਗਰੇਹੋ ਕੀਆ, ਸੇ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀਆ। ਤ੍ਰਿਹੋ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੈਰੇ। ਕਰੁੱਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜਨ ਜੰਮੈ, ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਏਂਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪਰਦਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਭਾ, ਸਭ ਕਾਲੈ ਵਸੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਨਿਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਚਲ ਜੋ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਫਿਰ ਸਰਲੈ ਸਰਲ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੁਆਰੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਜਿਤ ਮੰਤਰ ਪਤਾਸੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਠਹਿਰਾਏਂਦਾ।
रूड़ो ठाकर किते वस न आवै, हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै, कीता लोड़न सोई करायन दर फेर न कोई पाएंदा, जिथे औकट आए बंत है प्राणी तिथे हर त्याई है सारिंग पानी, जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई तिथे हर आप छड़ाएंदा, वड्डा साहेब अगमा था क्यों मिलिया प्रवे प्रवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए सो विच संगत वासा पाएंदा, हुक्म बूझे सो सेवक कही है बुरा भला दो संसार सही है, हाँ मैं जाए ता एको बूझे सो गुरमुख सही समाएंदा, हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुभाए अति तो दासी, अनकर अंग करै बो भाती जो पिता पूत लाडाएंदा, अगमा गोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिया जा ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन कहो जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा, तू आपे करता कारण करना सृष्टि उपाय धरी सब धरना, जन नानक शरण पया हर द्वारा हर भावै लाज रखाएंदा, मारू सोल हे महला पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है बाणी तेरी सरवनी सुनिए, दूजी अवर ना जाप सकाई सगल तुम्हारी धारणा, आप चितारे अपना किया आपे आपे आप प्रभथिया, आप उपाय रचियोन पासारा आपे कटकट सारणा, एक उपाय वड़ दरबारी एक उदासी एक करबारी।

जा कौ मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई शेख मसाए कहा जी, सो बंदा जिस नजर नरा। कुदरत कादर करण करीमा, सिबत मोहब्बत अथा रहीमा, हक हुक्म सच खुदाया बुझ, नानक बंद खलास तरा। मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब उच बिराजे, आपे थापो थापे साजे, प्रभ की शरण गहत सुख पाई है, किश भौ ना व्यापै बालका। गर्भ अग्न में जिन्हें उबारिया, रक्त किरम में नहीं संघारिया, अपना सिमरण दे प्रतपालिया, ओह सगल कटा का मालका। चरण कमल शरण आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख निवारे, जप हर हर पौ नहीं काल का। समर्थ अकथ है गोचर देवा, जी जंत सब ता की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु प्रकारी पालका। तिसै प्राप्त होए निधाना, राम नाम रस अंतर माना, कर गह लीने अंध कूपते, विरले के ही सालका। आदि अंत मध प्रभ सोई, आपे करता करे सोई, भ्रम पौ मिटिया साध संगते, दालद ना कोई कहलका। ऊतम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगोर वाला, बासन मेट निबासन होई है, कलमर सगले जालका। संता की है रीत निराली, पार ब्रह्म कर देखै नाली, सा सा सा राधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आलका। जै देखा तै अंतर जामी, निमखना विसराओ प्रभ मेरे स्वामी, सिमर सिमर जीवै तेरे दासा, बन जल पूर्ण थालका। तत्ती वाव ना तां कौ लागै, सिमरत नाम अंदन जागै, अनद बिनोद करे हसिमरन, तिस माया संग ना तालका। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही, अपना नाम देह प्रप्रीतम, सुन बेनंती खालका।

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध।

सुरत समाए, जीबर साए नी चुनड़ी रती लाल लवाए। अंदर मुस्क चकोलिया कीमत कही ना जाए, पौड़ी इस युग में नाम निदान है नामो नाल चले। एहो अखुट कदे नान खुटई खाए खर्चियो पल्ले। हर जन नेड़ ना आवई जम कंकर जम कल्ले। से सह सचेवन जा रहा जिन हर तन पल्ले। हर कृपा ते हर पाई है जा आप हर कल्ले। सलोक महला तीजा मनमुख वापार है सार ना जाननी। बिख विहाजै बिख संगरै बिख्यों तरह प्यार। बारों पंडित सदाए दे मनो मूर्ख का वार। हरसों चेतना लायनी वादी तरन प्यार। वादा किया करन कहानिया कूड़ बोल करे आहार। जग में राम नाम हर निर्मला होर मैला सब आकार। नानक नाम ना चेतनी हुए मैले मरै गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म मने दुख जाए। आपे दाता सुखै दाय आपे देश जाए। नानक ए वै जानी है सब कित सैर जाए। पौड़ी हर नाम बिना जगत है निरतन। बिन नामै तृप्त नाही दूजै परम पुलाया। हौ मैं दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाई है। जे बहुत लोचाही आवै जाए जम्मै मरै। गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिया दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग में संती तन खटिया। जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाए। इत तन पाया भुख लथी सुख वसिया मन आए। जिन्ना कहो तुर लिखिया तिन्नी पाया आए। मनमुख जगत निरतन है माया नू बिल लाए। अंदन फिरदा सदा रह भुख न कदे जाए। सांत ना कदे आवई न सुख वसै मन आए। सदा चिंत चित वदा रह सहसा कदे ना जाए। नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए। सदा सदा सुख में रह सच्चे महे समाए। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे। एको सिमरो पाए रहो जिस बिन अवर ना कोए। खाना शब्द चंगियाईया जित खादै सदा तृप्त होए। पहनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे ना होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे ना होए। देही नो शब्द सिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखाले सोए। पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै। हर हर नाम ते आई है हमें अज्ञान गवापै। अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै। जिन चाखिया से निरपौ पए से हर अस्त्रापै। हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी। गुण ना विहाजै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईयान जिसनो नजर करे। महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार। नानक हुक्म मन्ने सुख पाई है गुर शब्दी विचार। पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ। गुर शब्दी दर जानी है अंदर महल असराओ। खरे परख खजाने पाईयान खोटिया नाही थाओ। सब सचो सच वर्तदा सदा सच ने आओ। अमृत का रस आया मन वसिया नाओ। सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही। तू होवे हो नाहे बुझो ज्ञानी बुझना। एह अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत ना पाई है। अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानी है।
ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਆਪ ਗਿਆ ਭ੍ਰਮ ਪਹੁ ਗਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਗੁਰਮਤ ਅਲਖ ਲਖਾਈਐ ਉਤੋਂ ਮਤ ਤਰਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋਹੰ ਹੰਸਾ ਜਪ ਜਾਪੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਸੈ ਸਮਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਖਿਆ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਹਉਮੈ ਦੁਬਧਾ ਮਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਦੁੱਤਰ ਤਰੇ ਪਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਪੌੜੀ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਲ ਨੀ ਮੁੱਠੇ ਅਮਤੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਵ ਥੱਕੇ ਅੰਦਰ ਤਿਖ ਤੱਤੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਨਾ ਸੋਧਨੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਗੁੱਤੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੱਤੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਗਤੇ

मैं बोलत ही बड़लाज, राम जे पाया राम ते पवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डहके कना दिन दुए बर्तन की आस, राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आयासा ते भया निरास, सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुंदर है पार, उदक समुंद सलिल की साखिया नदी तरंग समावेंगे, सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे अमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिख सोई, जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक हो रहो सगल मैं अब कैसे परमावो, राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी कर।

दा करते जन्म सिरानो कबू ना सिमरियो राम। कह कबीर चेतै नहीं मूर्ख मुक्त गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उत्तर सपार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया।

आजकाल उठ जाहेगा रहाओ। लालच लागे जन्म गवाया माया परम पुलाहेगा। तन जोबन का गर्भ ना की जय कागद ज्यों गल जाहेगा। जो जम आए केस गह पटके ता दिन किश ना बसाहेगा। सिमरन भजन।

कहत कबीर सुनो रे संत हो, साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे शदर तरे रहाओ। जा की शोत जगत को लागे ता पर तू ही टरे, नीचे उच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबै सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मन, काम तेन बस जा के रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नव निध कर तलता कै। हर हर हरना जप सरसना, अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद बिद, चौतीस अक्षर माही। ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सर नाही। सहज समाध उपाद रहत होए, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला, बारह माह एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला। हर रचना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन घड़ी ना जीवा। प्रे बाज दुहेली कोई ना भेली, गुरमुखे अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी, प्रमन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले सातन, तू सुने आत्म रामा। बाबीहा प्रयो बोले कोकल बाणिया, सातन सबरस चोले अंक समाणिया। हर अंक समाणी जा प्रपाणी, सा सुहागण नारे। नाव कर थाप महल कर ऊंचो, निज कर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस्बासर रंग रावै। नानक प्रयो प्रयो चवै बबीहा, कोकल शब्द सुहावै। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने, मंत्र रवत रवन्ने घड़ी ना बिसरै। क्यों घड़ी बिसारी हों बलिहारी, हों जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हों किसके राह, हर बिन रहन ना जाए। ओट गही हर चरण निवासे, पय पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावै, गुर शब्दी मन तीरा। बरसै अमृत तार बूंद सुहावनी, साजन मिले सह सुभाए। हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदिर आवै जा प्रभावै। तानी उबी गुण सारी, घर घर कंतरवै सुहागण। हों क्यों कंत विसारी, उनम कन छाए। बरस सुभाए, मंतन प्रेम सुखावै। नानक वरसै अमृत बाणी, कर कृपा कर आवै। चेत बसंत पला पवर सुहावड़े, बन फूले मंज बार। मैं फिर कर बाहुड़ै, फिर कर नहीं आवै। तन क्यों सुख पावै, बिरह बिरो तन छीजै। कोकले अंब सुहावी बोलै, क्यों दुख अंक सहीजै। पवर पवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए। नानक चेत सहज सुख पावै, जे हर वार घर तन पाए। वैसाख पला साखा वेस करे, तन देखै हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे दुद पावा, देख दिखावै ढोलो। दूर ना जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वै साखी प्रपावै, सुरत शब्द मन माना। माहो जेठ पला प्रीतम क्यों बिसरै, थल तापै सर पार। सा तन बिनों करै, तन बिनों करेंदी गुण सारेंदी। गुण सारी प्रभाव।

मन राजा मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस बियोगी मन समझे गुण गाई गुरते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहेब पर पुरलीना साच शब्द निस्तारा पहरो महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तनहीना जर जीते आस।

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मन

जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता से जग में काहे आया, गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए, जो इच्छा सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। पहरो महला तीजा दुख विच जमै दुख मरे, दुख विच कार कमाए गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिष्टा माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया, पूरे गुर की सेव ना कीनी हर का नाम ना पाया रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए, जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वड़ियाई जिसनो मन वसाए। सतगुर भेटै ता फल पाए सच करनी सुखसार, से जन निर्मल जो हर लागे हर नामे तरह प्यार। तिन किरण मिलै ता मस्तक लाई जिन सतगुर पूरा त्याया, नानक तिन किरण पूरा भाग पाई जिनी राम नाम चित लाया। पैरो महला तीजा शब्द विचारे सोजन साचा, जिन कै हृदय साचा सोई साची भगत करै दिन राती ता तन दुख न होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत न पाई है, पूरे भाग मिलै प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवावै लाभ मांगै, लाहा लाभ किदू होई जमकाल सदा है सिरी उपर दूजे पाए पत खोई। बहले पेख पवै दिन राती हौ मैं रोग न जाई, पड़ पड़ लूजै बाद वखाणै मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेवै परम गत पावै नाम मिलै वडियाई, नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पथ पाई। पैरो महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै, दूजे पाए खुवाए उधर नैसान न भरिए कबहू तृष्णागन पचाए। सदा आनंद राम रस राते हृदय नाम दुबदा मन भागी, हर हर अमृत पीतृ बताते रहाओ। आपे पार ब्रह्म सृष्टि जिन साजी सिर सिर तंदे लाए, माया मोह किया जिन आपे आपे दूजे लाए। तिसनो केहो कहियै जे दूजा होवै सब तुद्दै महे समाए, गुरमुख ज्ञान तत् विचारा ज्योति ज्योत मिलाए। सो प्रभ साचा सद ही साचा साचा सब आकारा, नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा। पैरो महला तीजा कल मैं प्रेत जिनी राम ना पिछाता, सतजुग परमहंस विचारी द्वापर त्रेतै मानस वरतै विरले हों मैं मारी। कल मैं राम नाम वडियाई जुग जुग गुरमुख एको जाता, विणना मैं मुक्त ना पाई रहाओ। हृदय नाम लखै जन साचा गुरमुख मन वसाई, आप तरै सगले कुल तारै जिनी राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगण शब्द जलाए, जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाए। घर दर महल सतगुरु दिखाया, रंग सो रलिया माने जो कुछ कहे सो भला कर माने, नानक नाम वखाणे। पैरो महला तीजा मनसा मन समाए।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपने खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंछ है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पैरो महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावे, निंदक अगन में पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दोखी अपना कीता पाया, आए ना जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितविये तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, सागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जगत राया, पैरों महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर्व मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यास पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए,